इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

जगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: के बनाए कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत।
1: श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम शक्ति मंच।

शक्तिमान सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी हेमलता का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज की हमारी चर्चा रहेगी वित्तीय सहायता और महिलाएं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं पुरुषों से अधिक सजग हो रही हैं। अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को लेकर वे पहले जैसी कमजोर और लाचार नहीं हैं। जीवन में कोई भी संकट आए, उससे उबरने में आज महिलाएं सक्षम हैं, चाहे वो वित्तीय मामले हों या कोई अन्य। अक्सर सभी परिवारों में यह देखा जाता है कि महिलाएं अपनी समझदारी से छोटी छोटी बचत करती हैं, जिनका उपयोग वो अपने कठिन समय में करती हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब संकट की घड़ियां आ जाएं, ऐसे में क्या किया जाए, कैसे ऐसी स्थिति से में खुद को और परिवार को संभाला जाए। घर गृहस्थी में इतने खर्चे होते हैं कि आज के लाइफस्टाइल में पुरुष व महिला दोनों कमाएं तो घर चलता है। बच्चों की देखभाल, पढ़ाई, घर का किराया, फ़ोन के बिल, बिजली पानी के बिल सब मिलाकर इतना होता है कि कब सैलरी आई और कब हाथ से चली गई

0: पता ही नहीं चलता। घर बनाने के सपने सपने बनकर रह जाते हैं। ये कहानी किसी एक घर की नहीं, ये हम जैसे हर व्यक्ति की है। फिर भी हर दंपत्ति अपनी सूझबूझ से थोड़ा बहुत निवेश अवश्य करते हैं। महिलाओं में पुरुषों से छुपाकर बचत करने की आदत होती है। वे अक्सर मुसीबत के समय में अपने पत्ते खोलती हैं। बचत करना हर महिला की आदत होती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कोई बड़ी मुश्किल की घड़ी आ जाए और जिसमें वो स्वयं को असुरक्षित महसूस और असहाय महसूस करें तो क्या किया जाए, कहाँ से वित्तीय सहायता प्राप्त करें, क्योंकि रोजगार तो सब महिलाओं के पास है नहीं और जीवन की रोज़मर्रा की ज़रूरतों जैसे बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, घर का किराया आदि को हम कल पर नहीं टाल सकते। ऐसे में कोई महिला क्या करे? प्रत्येक महिला को सरकार से मिलने वाली सहायता की जानकारी भी अवश्य ही होनी चाहिए। सरकार द्वारा समय समय पर महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ अवश्य उठाया जा सकता है। ये कौन सी योजनाएं हैं, इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको सुनाएंगे यहाँ एक प्यारा सा गीत।
1: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आज़ादी का जश्न मनाने यहाँ आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आज़ादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराह भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

सखियों, महिलाओं के सशक्तिकरण से जीवंत परिवारों, उन्नतिशील समुदायों और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। पिछले 10 सालों में भारत में आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर काफ़ी बदलाव हुए हैं। सरकार ने कौशलों, ऋण बाजारों और आजीविकाओं तक महिलाओं की पहुंच के विस्तार को प्राथमिकता दी है। इस प्रयास में ग्रामीण और वंचित महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करना है जिसमें हर महिला प्रगति में बराबर की भागीदार होगी। भारत सरकार इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए योजनाओं के एक व्यापक समूह के माध्यम से काम कर रही है। इनमें स्वयं सहायता समूहों और लक्षित ऋण से लेकर ड्रोन प्रौद्योगिकी और उद्यमिता मंच तक संबंधित योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल साधनों और सहकारिता नेटवर्क में भी निवेश किया है। इन उन्नतियों से भारत महिला आर्थिक नेतृत्व के वैश्विक मॉडल के तौर पर उभर रहा है। नारी शक्ति का मार्गदर्शक बल एक ऐसा समावेशी विकास सुनिश्चित करता है जिसमें कोई भी महिला पीछे नहीं छूटेगी। लड़कियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का मतलब उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों तक पहुंच के लिए सही निवेश करना है। इससे वे अपने लिए स्वतंत्र और गरिमामय जीवन का निर्माण कर सकेंगी। इससे सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि परिवारों, समुदायों और समूचे राष्ट्र का भविष्य भी मजबूत होगा। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आपातकालीन जरूरतों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें महिला उद्यमिता, विवाह और आपातकालीन सुरक्षा के लिए सीधे बैंक खातों में आर्थिक सहायता दी जाती है। सहायता कार्यक्रमों का कि ये योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत महिला उद्यमियों को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर में नया उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का बैंक लोन मिलता है। सामाजिक सुरक्षा एवं आपातकालीन सहायता में वन स्टॉप सेंटर सखी योजना आती है। हिंसा या घरेलू विवाद से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी सहायता और 5 दिन के अल्पकालिक प्रवास की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलती है। तेजाब से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को राज्य सरकारों द्वारा पुनर्वास और मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। पंजीकृत महिला श्रमिकों या कामगारों की बेटियों की शादी के लिए बोर्ड द्वारा 50,000 से 55,000 तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए शून्य बैलेंस पर खाते खोले जाते हैं, जिसमें दुर्घटना बीमा और ड्राफ्ट की सुविधा भी शामिल रहती है। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। यहाँ सुन लेते हैं एक और गीत।

सखियों, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत की गई। इस योजना में बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह अभिभावकों को शिक्षा और विवाह समेत बालिकाओं की भविष्य की जरूरतों के लिए धन बचाने में मदद करने वाली एक सरकारी बचत है। यह योजना उच्च ब्याज दर, टैक्स लाभ और सुरक्षा देकर परिवारों को बालिकाओं की प्रगति और स्वतंत्रता के लिए उनकी कम उम्र में ही निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के कई लाभ हैं। इसे 8.2% की सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर इस पर मिलता है।

50 रुपये के गुणक में सालाना 250 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक की राशि जमा की जा सकती है। 15 साल के लिए बचत की इजाज़त खाता खोले जाने से 21 साल के बाद परिपक्व होता है। बालिका के 18 साल की होने या 10वीं का दर्जा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा या विवाह के लिए 50% तक राशि की आंशिक निकासी का इसमें प्रावधान है। सखियों, ग्रामीण भारत में एक विलक्षण बदलाव दिखाई दे रहा है। सामुदायिक बल, कौशल निर्माण और संसाधनों तक पहुंच से लाखों परिवारों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अपनी दूरदृष्टि तथा प्रौद्योगिकी आधारित और लोक केंद्रित पहलकदमियों से ग्रामीण परिवारों और खासतौर से महिलाओं को आत्मविश्वासी, उद्यमी, कुशल उत्पादक तथा उन्नतिशील अर्थव्यवस्था का सक्रिय योगदानकर्ता बनाने में समर्थ कर रही है। सखियों, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को एकजुट कर उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाता है। इससे उनमें समुदाय और आपसी विश्वास की भावना मजबूत होती है। इन स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं और उनके परिवारों को कौशल प्रशिक्षण, किफ़ायती ऋण तथा छोटे उद्यम शुरू करने, ऊंचाई के अवसरों तक पहुंचने और मौजूदा आजीविका को बढ़ाने का मौका मिलता है। समय के साथ लगातार समर्थन से उन्हें आमदनी बढ़ाने, भविष्य के लिए बचत करने, बच्चों को स्कूल भेजने और परिवारों को मजबूत और ज़्यादा सुरक्षित जीवन देने में इससे सहायता मिलती है। इसके अंतर्गत बैंकों की शाखाओं पर प्रशिक्षित बैंक सखियों की तैनाती की जाती है। वे स्वयं सहायता समूहों को बचत खाता, जमा और निकासी, ऋण तथा अन्य बैंकिंग सुविधाओं समेत वित्तीय सेवाओं में सहायता करती हैं। पूरे साल परामर्श और मदद देने के लिए प्रशिक्षित कृषि सखी जैसे सहायता कर्मियों की तैनाती की जाती है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, घरेलू हिंसा शमन और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जागरूकता अभियान चलाया जाता है। अब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और सुनेंगे एक और गीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शक्ति मंच हेमलता के साथ FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा।

बाल सेवा सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, श्रोताओं को और स्टूडियो में आए सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। भाई, जैसा कि रवायत सी एक बन चुकी है, बाल सभा कार्यक्रम की शुरुआत में हम जो महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं उनके बारे में एक चर्चा ज़रूर करते हैं। तो अब तो आपको पता ही है कि ये कौन सा सप्ताह चल रहा है, ज़रूर आप जानते हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ना, तो मुझे पता लग रहा है कि आपको पता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक हम मना रहे हैं। और ये बहुत, जिसको कहेंगे ना, महत्वपूर्ण त्यौहार की तरह हमें मनाना भी चाहिए और इसके महत्व को समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेड़ों की कटाई के कारण आपने देखा ही होगा कि तापमान में जो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, बाढ़, आंधी, तूफान, सूखा और जाने कितनी तरह की समस्याएं जो और पैदा होती चली जा रही है ना, उन सब का कारण यही है कि इंसान जो है वो अपनी जरूरतों के लिए वनों को काटते चला जा रहा है। तो आप बच्चे अगर इसके महत्व को समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में पेड़ लगाने का क्या महत्व है, तो बस फिर सारी समस्या का निदान भी हो गया। तो आपको हम ये बता देते हैं कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हमारी धरती हरी भरी रहे। एक तो सुंदरता बढ़ेगी और दूसरे, जो आपने सुना ही होगा कि पानी का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन, भूमिगत पानी का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है और पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध होना थोड़े ही वक्त में मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये बात समझिए कि पानी, जो कि हमारी एक मूलभूत ज़रूरत है, जिस

0: के बिना जीवन असंभव है इस धरती पर, तो उसे बचाना तो कितना ज्यादा जरूरी है। और हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही अगर नकार देंगे तो फिर तो हमारा जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप बच्चे लोग एक संकल्प लीजिए कि अगर कोई भी महत्वपूर्ण दिन आता है, बस उस दिन आपने और कोई काम करना हो या ना करना हो, आप एक पेड़ जरूर लगाएंगे, बस हो जाएगा समस्या का निदान। और हाँ, पेड़ लगाना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ उसकी देखभाल करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप पेड़ लगाकर भूल जाएंगे तो फिर वो मर जाएगा। तो आपको पेड़ों को मरने से बचाना है, उन्हें पानी देना है, खाद देनी है, और जो भी आप कर पाएंगे वो ज़रूर कीजिएगा। और फिर इसकी खुशी को महसूस कीजिएगा, जैसे आपका जन्मदिन है, या आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, या भाई बहना किसी का भी जन्मदिन है, तो आप ज़रूर एक पेड़ लगाइए और फिर उसकी खुशी को महसूस कीजिएगा। जब वो पेड़ बड़ा होगा, आपको लगेगा आप ही साथ साथ बड़े हो रहे हैं। तो भाई, ये तो जिक्र हुआ जो वन महोत्सव का महत्व है उसका। और अब चलते हैं पहले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
1: मेरा नाम अनन्या है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है प्रकृति की देन। सबका पालन करने वाली, सबको भोजन देने वाली, मेघ सब बरसाने वाली, धूप को दर्शाने वाली, चांद सूर्य दिखाने वाली, धरती को घुमाने वाली, जीव जंतु बनाने वाली, खेत में फसल उगाने वाली, ठंडी हवा चलाने वाली, बादल को गरजाने वाली, प्रकृति है सब करने वाली। धन्यवाद।
0: सुंदर कविता आपने हमें सुनाई। कविता सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और चलते हैं अगले कलाकार की तरफ। देखते हैं क्या नाम है इस बच्ची का?
2: कर्मण्या।
0: कर्मण्या, तो आप क्या लाए हैं आज आकाशवाणी में?
2: एक कविता।
0: कविता लाए हैं आप हमारे लिए, सुनाइए कविता।
2: कौन सिखाता है चिड़ियों को चीची चीची करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता फुरसे उड़ना दाने चुक चुक खाना, कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना, कौन सिखाता बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। कुदरत का यह खेल, वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे।
0: बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही सुंदर कविता आपने हमें कर्मण्य सुनाई। जैसे कि आप प्यारे से हैं, ऐसी ही सुंदर और प्यारी सी आपकी कविता थी कि पक्षियों को कोई सिखाता नहीं है कि किस तरह से लालन पालन करना है, या जीने के तौर तरीके अगर बात की जाए तो पक्षियों को कौन सिखाता है? आपको आपके मम्मी पापा सिखाते हैं ना, अच्छी बातें सिखाते हैं आपके मम्मी पापा?
3: जी दीदी।
0: और सब बच्चे ध्यान से अपना काम भी करते हैं?
3: जी दीदी।
0: लेकिन पक्षियों को ये सब बातें कौन सिखाता है? कोई नहीं, कुदरत उनको ये सब सीख देती है। कुदरत ही उनको सब कुछ अपने आप स्वयं से सिखा देती है। तो कुदरत के ही हम सब भी वंशज हैं। बहुत ही अच्छी और सुंदर, एक भाव समेटे हुए प्यारी सी कविता थी आपकी। चलते हैं अगले कलाकार की तरफ। देखते हैं क्या नाम है इस बच्ची का?
4: लावण्या।
0: आप क्या लाई हैं हमारे लिए?
4: एक कविता।
0: आप भी कविता ही सुनाएंगी, चलिए सुनाइए।
4: प्रातः स्मरणीय शहीदों का वंदन है, जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है, जिन्हें आत्मसम्मान रहा प्राणों से प्यारा, उन्हें याद करती अब भी गंगा की धारा। ले हाथों में शीश चले ऐसे मतवाले, आजादी के लिए हालाहाल पीने वाले, आजादी के रखवालों को हृदय नमन है, जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है, जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है, जिनकी दृढ़ता से उन्नत है आज हिमालय, अब उनके पश्चिम हमारे लिए शिवालय। आज तिरंगा जिनकी याद लिए फहराता, वक्त आज भी जिनकी गौरव गाथा गाता, धन्य नींव के पत्थर जिन पर बना भवन है, जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है, जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है। महके बीज गुलाब गन बाटे खुशहाली, नव दुल्हन सी एक नजर नाचे हरियाली, अनुशासन से देश नया जीवन पाता, कर्मशील ही हो आगे जा पूजा जाता। आज धरा खुशचाल और उन्मुक्त गगन है, जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है, जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन, जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है।
0: जी, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर। शहीदों को तो हमारा यूं भी हर पल सोते

0: जागते उठते बैठते नमन है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे देश के सिपाही हैं, वो कहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं आपको पता है? बहुत ही दूर, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, और ठंड में, गर्मी में, हर मौसम में वो वहाँ पर तैनात रहते हैं। वो अपनी नींदें सारी हम पर कुर्बान कर देते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। तो ये बहुत ही सुंदर कविता थी आपकी लावण्या, और मुझे बहुत पसंद आई, और उम्मीद करते हैं कि बाल जगत सुनने वाले सभी श्रोताओं को ये कविता उतनी ही पसंद आएगी जितनी कि हमें पसंद आई। तो अगली रचना सुनने से पहले क्यों ना एक देशगान सुन लिया जाए। बच्चों, सभी सुनेंगे देशगान?
1: जी दीदी।
0: तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा देशगान।

0: कैसा लगा ये देशगान आपको? अच्छा लगा ये देशगान?
1: जी दीदी।
0: पसंद आया सबको?
1: जी दीदी।
0: तो अब चलते हैं अगले कलाकार की तरफ। क्या नाम है आपका?
2: अभय।
0: अभय, अरे बड़ा ही प्यारा नाम है आपका भी। अभय, आप क्या लाए हैं हमारे लिए?
2: एक कविता।
0: आप ही कविता लाए हैं, सुनाइए।
2: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बहुत बहुत दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष

0: मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही अच्छी कविता, और इतना सुंदर भाव इस कविता में सिमटा हुआ था। भाई वाह, क्या बात है अभय, आज तो आपने कमाल कर दिया। चींटी के बारे में हमें बताया कि चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन फिर भी अंत में उसे सफलता मिल ही जाती है। और वाकई कितना सुंदर शब्द है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मज़ा आ गया आपकी कविता सुनकर अभय। और सभी बच्चे जिंदगी में मेहनत करते हैं
2: जी दीदी,
1: तभी आप वर्ष के अंत में सफलता को प्राप्त करते हैं
2: जी दीदी।
1: कहने का अभिप्राय है कि अगर आप सारा साल, सारा वर्ष खूब मेहनत करके दिल से, लगन से पढ़ाई करते हैं, तो अंत में आपको जो परिणाम है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, और उस पल जो खुशी मिलती है उसका मोल हम लगा ही नहीं सकते हैं। वो खुशी अमूल्य खुशी होती है, उसका मोल नहीं हम कर सकते। तो वो खुशी आपको मिलती कैसे है, क्योंकि आप
2: मेहनत करते हैं।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे से आपने कहा कि क्योंकि आप सारा वर्ष खूब मेहनत करते हैं और आपका परिणाम बहुत अच्छा आता है, और फिर आप उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यही इस कविता का सार था। चलते हैं अगले कलाकार की तरफ। क्या नाम है इसका?
3: माही।
1: माही, माही क्या सुनाएंगी आज हमें?
3: पोयम।
1: पोयम सुनाएंगी, आपने भी इनके साथ सुनानी है मिलकर। क्या नाम है आपका?
3: देवीना।
1: देवीना, तो दोनों मिलकर एक पोएम सुनाएंगे हमें, सुनाइए।
4: ओ गॉड, यू आर माय फादर, आई एम योर लिटिल चाइल्ड, गिव मी योर लव, शो मी योर लाइट, दैट आई मे फॉलो द वे टू थिंग गुड एंड टू थिंग राइट। थैंक यू
1: भाई, बहुत ही सुंदर कविता आपने हमें सुनाई। अब चलते हैं अगली नन्नी मुन्नी कलाकार की तरफ, देखें ये क्या लेकर आई हैं। क्या नाम है आपका?
5: अनुष्का।
1: अनुष्का, अनुष्का आप क्या लाई हैं?
5: पहेलियाँ।
1: अरे वाह, क्या बात है, कविता से हटकर कुछ सुनने को मिलेगा हमें, पहेलियाँ सुनने को मिलेंगी। तो सभी तैयार हैं पहेलियाँ पूछने के लिए?
2: जी दीदी।
1: तो अनुष्का आपसे कुछ पहेलियाँ पूछेंगी, जिसे सही जवाब आता होगा वो सही जवाब दे देगा, ठीक है? तो अनुष्का तैयार हैं? आप सब भी तैयार हैं अपने अपने दिमागों की वर्जिश के लिए?
2: जी दीदी।
1: चलिए देखते हैं कौन जवाब देता है। चलिए अनुष्का।
5: पढ़ने में, लिखने में, दोनों में ही आता काम, पेन नहीं, कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम?
1: बताइए बताइए बताइए, पेन नहीं, कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? हाँ जी हाँ जी, आप बताइए। अभय,
6: चश्मा।
1: क्या ये सही जवाब है अनुष्का?
5: जी दीदी।
1: सही जवाब, तो एक बार अभय के लिए तालियां जोरदार। और भी कुछ लाई है अनुष्का?
5: जी दीदी।
1: क्या है?
5: मेरा भाई बड़ा शैतान, बैठे नाक पर पकड़े कान।
1: बैठे नाक पर और पकड़े कान, सोचो सोचो सोचो सोचो सोचो सोचो, पता है आपको? चलिए आप बताइए क्या है इसका सही जवाब?
7: साइकिल।
1: साइकिल क्या सही जवाब है?
5: जी दीदी।
1: जोरदार तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए। इस बच्ची का नाम है खुशी। खुशी नाम है आपका?
7: जी दीदी।
1: आपने सही जवाब दिया और बाजी जो है वो जीत ली। तो अब अनुष्का और भी पहेलियां हैं आपके पास?
5: जी दीदी।
1: हाँ जी पूछिए।
5: उसमें बैठा काला शैतान, गर्मी में वह दिखता, सर्दी में गायब हो जाता।
1: सर्दी में गायब हो जाता और गर्मी में दिखता, क्या बात है। जी हाँ, लावण्या बताना चाहती हैं इसका जवाब। लावण्या बताइए। हाँ जी लावण्या, क्या जवाब है इसका?
8: तरबूज।
1: तरबूज, क्या ये सही जवाब है?
5: जी दीदी।
1: सही जवाब, एक बार लावण्या के लिए जोरदार तालियां। देखो अनुष्का, आपकी तो सब पहेलियां बूझ ली बच्चों ने, कोई मुश्किल सी पहेली बूझो अब।
5: काला मुंह, लाल शरीर, कागज को वो खा जाता, रोज शाम को पेट फाड़ कर कोई उन्हें ले जाता।
1: कोई उन्हें ले जाता, ये पहेली जरा ज्यादा मुश्किल है, किसी भी बच्चे को इसका जवाब नहीं आता शायद। तो अनुष्का आप ही बताइए इसका जवाब।
5: लेटर बॉक्स।
1: लेटर बॉक्स, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां अनुष्का के लिए। अनुष्का और भी हैं पहेलियां या खत्म?
5: खत्म
1: खत्म हो गई आपकी पहेलियां।

0: चलिए अब अनुष्का के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए अनुष्का के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी पहेलियां इसने बूझी हैं। सभी बच्चों को मजा आया?
1: जी दीदी।
0: चलिए अब हम चलते हैं अगले नन्हे मुन्ने कलाकार की तरफ, देखते हैं क्या नाम है इनका।
2: अन्वी।
0: अन्वी क्या सुनाएंगी? अन्वी
2: एक कविता।
0: कविता स्वागत है, सुनाइए।
2: हमें ना कोई छोटा समझे, हम हैं हिंदुस्तान के, सर्दी गर्मी हो बरसात, चलते सीना तान के। एकलव्य अभिमन्यु लवकुश वीर बालक थे भारत के, रामायण के राम थके थे, द्रोणाचार्य महाभारत के। नई सदी के बच्चे हैं हम, जोश होश और ताकत है, बुरी नजर से जो देखेगा समझो उसकी आफत है।
0: बहुत ही अच्छी कविता अन्वी आपने सुनाई कि नई सदी के बच्चे हैं हम, जोश होश और ताकत है, बुरी नजर से देखेगा जो समझो उसकी आफत। भाई बड़ा ही मजा आया हमें आपकी कविता सुनकर अन्वी, और ये तो हुई कविता की बात, और अब चलते हैं अगली कलाकारा की तरफ। क्या नाम है इसका?
3: तेजस्वी।
0: तेजस्वी क्या सुनाएंगी? तेजस्वी
3: पानी की बचत पर एक कविता।
0: पानी की बचत, भाई आज तो मुझे लगता है सभी बच्चे ज्वलंत मुद्दों को लेकर अभियान चला रहे हैं यहाँ पर, कि किस तरह से सारी जनता को जागरूक किया जाए, किस तरह से सुनने वाले बच्चों को भी जागृत किया जाए। तो भाई स्वागत है आपकी कविता का, सुनाइए।
3: पानी तो अनमोल है, उसको बचा के रखिए, बर्बाद मत कीजिए, इसे जीने का सलीका सीखिए। पानी को तरसते हैं धरती पे काफी लोग यहाँ, पानी ही तो दौलत है, पानी साधन भला कहाँ। पानी की मात्रा सीमित, पीने का पानी और सीमित, तो पानी को बचाइए, इसी में है समृद्धि निहित। शेविंग या कार की धुलाई या जब करते हो स्नान, पानी की जरूर बचत करे, पानी से ही धरती महान। पानी बचाओ जिंदगी बचाओ।
0: बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई कि पानी बचाओ और जिंदगी बचाओ। आपको पता है हमारे ही देश में स्थिति किसी किसी जगह पर तो ऐसी है कि पानी लेने के लिए घर की औरतों को बहुत दूर तक सफर करके जाना पड़ता है, मीलों वो पैदल चल के जाती हैं और तब दो बूंद पानी उन्हें नसीब होता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी ये बात आपने कही। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप ब्रश करते हैं पानी चलता छोड़ते हैं या बंद कर देते हैं? सच सच बताना, बताइए बताइए, आप बताइए क्या करते हैं?
2: बंद कर देते हैं,
0: पानी बंद कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे पानी बंद नहीं करते हैं तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो चलते हुए पानी को इसी तरह से यूं ही मत बहने दें, उसका सही इस्तेमाल करें। आप अपने मन से अलग अलग तरीके भी खोज सकते हैं कि किस तरह से हम पानी की बचत कर सकते हैं जिससे ये दूसरों के काम आए। चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इस बच्चे का?
2: आयान।
0: आयान, अरे बहुत ही प्यारा नाम है आयान, आप क्या सुनाएंगे?
2: एक कविता।
0: कविता सुनाएंगे, सुनाइए, आपकी कविता का स्वागत है।
2: शब्द है थोड़े उनके आगे, कैसे उन्हें पिरों मैं, माँ की ममता सोचकर देखूं तो बिन आंसू के रोऊं मैं। जिसने ये संसार बनाया, उसके स्नेह से मन हर्षाया, उनकी गोद में सर रखकर बिन नींदों के सोऊं मैं। माँ की भक्ति में है चारों धाम, तन मन में बसा हो जब उनका नाम। ऐसी माँ का लाल बनकर बिन हीरे के दमकूं मैं। शब्द थोड़े उनके आगे, कैसे उन्हें पिरोऊं मैं। धन्यवाद।
0: क्या बात है। तो अब चलते हैं अगले कलाकार की तरफ। क्या नाम है आपका?
4: खुशी।
0: खुशी, खुशी क्या लाई है आज हमारे लिए?
4: पहेलियाँ।
0: आप भी पहेलियाँ लाई हैं, चलिए खुशी।
4: काले वन की रानी है, लाल पानी पीती है।
0: लाल पानी पीती है, लाल पानी कौन पीता होगा? लाल पानी पीती है, करमन्ने को शायद इसका जवाब आता है। करमन्ने आप बताइए क्या है इसका सही जवाब, बताओ जो मन में है, बोलो बोलो। अच्छा भूल गए आप, जवाब ही भूल गए। चलिए इधर देखते हैं हम इस तरफ से। जी हाँ, अभय भी जानते हैं इसका जवाब, तो अभय आप बताइए इसका क्या सही जवाब है?
5: खटमल।
0: खटमल, क्या ये सही जवाब है?
5: जी दीदी।
0: क्या बात है, जोरदार तालियां अभय के लिए एक बार फिर से। और अब चलते हैं, नहीं शायद खुशी के पास बहुत सारी पहेलियां हैं। चलिए खुशी पूछिए अपनी अगली पहेली।
4: ऊंट की बैठक हिरन की चाल, बोलो वे कौन है पहलवान।
0: कौन है पहलवान? ऊंट की बैठक हिरन की चाल, कौन है ये पहलवान? तो अनुष्का को शायद इसका सही जवाब आता है। अनुष्का बताइए।

0: मेंढक।
1: मेंढक सही जवाब है खुशी
2: जी। दीदी
1: जोरदार तालियां अनुष्का के लिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा। और एक और पहेली भी है शायद आपके पास। जी हाँ।
2: हरी डंडी लाल कमान, धोबी धोबी करे

0: भी आपने लिखी है?
1: जी दीदी।
0: हाँ जी बुझिए।
1: एक पहेली मैं बुझाऊं, सिर को काट नमक छिड़काऊं।
0: सिर को काट नमक छिड़काऊं, सोचिए सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब शायद किसी को नहीं आता, तो खुशी आप ही बताइए इसका सही जवाब क्या है।
1: खीरा।
0: खीरा। एक बार जोरदार तालियां खुशी के लिए। तो खुशी आपकी पहेलियां समाप्त हो गई या अभी कुछ और है?
1: जी दीदी समाप्त
0: हो गई हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बड़ा मजा आया हमें पहेलियां बूझकर, सुनकर, और उनके सही जवाब भी बच्चों को आते थे ये देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर स्टूडियो में आए बच्चे भी बहुत खुश हैं पहेलियां सुनकर।
2: जी दीदी।
0: आपको मजा आया?
2: जी दीदी।
0: अरे वाह क्या बात है। तो अब चलते हैं अगली नन्नी मुन्नी कलाकार की तरफ। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम दीक्षा है। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही ये गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, सागर के सीने से पाए हैं जो मोती, लहरें कभी बल खाएं, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, जब कदम बढ़ाएंगे मंजिल मिल जाएगी, ये रहा बड़ी मुश्किल, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आ जाए, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, ये महक गुलाबों की महकाती है गुलशन, ये महक गुलाबों की महकाती है गुलशन, कांटा कभी लग जाए, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना।

0: ಭಾರತ ಅಭ್ಯಂಥಾನ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಕದಾತಮಾನಂ ಸಜಮ್ಯಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿದ್ಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯ ನಮಸ್ತಸ್ಯ ನಮಸ್ತಸ್ಯ ನಮೋ ನಮಃ।
1: चलते हैं अगले कलाकार की तरफ, देखते हैं क्या नाम है इस बच्ची का।
2: मेरा नाम अनंत है, मैं आपको कविता सुनाने वाला हूँ। एक कौवा पहले घड़े में पानी धो रहा था, कौवे ने डाले कंकर, पानी आ गया ऊपर, कौवे पिया पानी, खत्म हुई कहानी। बंदर मामा चले स्कूल पहन के, पियंगा सूट उतार करके चलते हैं, सबसे हेलो करते हैं। छुट्टी का दिन आया है, सबके मन को बाया है, हाथ नवन में जाएंगे, दिन भर धूम बचाएंगे।
1: तो बच्चों, आप सब स्टूडियो में आए और आपने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की, इस सब के लिए हमें आपको धन्यवाद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे मन से निकल रहा है कि आज हम आपको धन्यवाद जरूर दे दें। तो आप सभी का धन्यवाद, और इसी तरह से आते रहिए हमारा कार्यक्रम। जो सुनने वाले बच्चे हैं या श्रोता है वो सुनते रहिए, पर अभी लेते हैं आपसे अनुमति क्योंकि वक्त हो चला है समाप्ति का। तो सब बच्चे मिलकर बोलेंगे
3: जय हिंद।
0: शिक्षा है, मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ।

0: हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सागर के सीने से पाए हैं जो मोती, लहरें कभी बल खाएं, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे।
1: और पहेली भी आपने लिखी है, तो मुझे लगता है यहाँ पर स्टूडियो में आए
0: मंजिल मिल जा, ये वक्त न ठहरा।
1: जवाब, इसका सही जवाब शायद किसी को नहीं आता, तो खुशी आप ही बताइए इसका सही जवाब क्या है।
2: खीरा।
1: खीरा, एक बार जोरदार तालियां खुशी के लिए। तो खुशी आपकी पहेलियां समाप्त हो गई या अभी कुछ और है?
2: जी दीदी, समाप्त
1: समाप्त हो गई है।

0: तो बहुत ही अच्छी बात है, बड़ा मजा आया हमें पहेलियां बूझकर, सुनकर और उनके सही जवाब भी बच्चों को आते थे ये देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर स्टूडियो में आए बच्चे भी बहुत खुश हैं पहेलियां सुनकर।
1: जी दीदी।
0: आपको मजा आया?
1: जी दीदी।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो अब चलते हैं अगली नन्नी मुन्नी कलाकार की तरफ। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम दीक्षा है। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही ये गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, सागर के सीने से पाए हैं जो मोती, लहरें कभी बल खाएं, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, जब कदम बढ़ाएंगे मंजिल मिल जाएगी, ये रहा बड़ी मुश्किल, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा FM एंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: विविध भारती।
2: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी,
0: जी
1: आज की विविधा का आरंभ मेरी इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का। एक ऐसा गीत जो हमारी श्रोता आम तौर पर हमारे कार्यक्रमों में नहीं सुनते, आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि उस गीत से कार्यक्रम का आरंभ किया जाए। ये छोड़ दिया जाए हमारे श्रोताओं पर कि वो पहचाने इसकी गीतकार कौन है।

0: क्या बात है, गीता दत्त जी की आवाज में इतना मीठा, इतना खूबसूरत गाना पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया हुआ अपने श्रोताओं को हमने सुनवाया
1: जी।
0: और अब तक हमारे श्रोताओं ने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये हिंदी के कोई मूर्धन्य कवि जिनका फिल्मों से बहुत गहरा रिश्ता है
1: जी, जी,
0: रहे
1: जी।
0: होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर कवि गीतकार पंडित भरत व्यास जी की।
1: हिंदी अपने संपूर्ण वैभव और पूरे परिष्कार के साथ सामने आती है तो वो आती है हमारे इन महान कवि गीतकारों की रचनाओं के जरिए। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी सिनेमा हमेशा उपकृत रहेगा इन सभी कवियों और गीतकारों का जिन्होंने समृद्ध किया हमारी भाषा को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज है जो सीधे हृदय पर असर करती है।
0: निश्चय ही बहुत उचित बात आपने कही है मनीषा जी, तत्सम शब्द होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यानी भाषा जो है पूरी तरह से अलंकृत है, संस्कृतोद्भव शब्दों का उपयोग उसमें किया गया है, परंतु ऐसे शब्द जो सामान्य जन को आसानी से समझ में आ जाए।
1: जी हाँ, तो इन्हीं तत्सम शब्दों के प्रयोग को हम पाते हैं बहुतायत में हमारे कुछ कवियों की रचनाओं में। और एक बात मैं कहना चाह रही थी, एक और फिल्म है जिसके गीत पंडित भरत व्यास ने लिखे और वो फिल्म कवि कालिदास है ना। और आप सोचिए कि इस फिल्म के लिए जब एक संस्कृत के महान कवि की बात हो रही हो तो रचनाएं तो पंडित भरत व्यास ही लिखेंगे। क्या सुंदर रचना है, आषाढ़ का महीना भी है, मुझे लगता है कि आषाढ़ के पहले बादल को संबोधित करते हुए वो जो गीत है उसकी एक झलक हम सुन लें।

0: पंडित भरत व्यास के बारे में हम आपको बताएं श्रोताओं, पंडित भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। कलकत्ता से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाकी पढ़ाई पूरी करने वो मुंबई आ गए और जुड़ गए सिने जगत से।
1: और सिने जगत को उन्होंने अमूल्य उपहार दिए अपनी सुंदर रचनाओं के जरिए। उनके किन गीतों की बात हम आपसे करें, एक से एक मोती हैं जो उन्होंने पिरोए हैं। और
0: 1943 में पहली फिल्म आई दुहाई और फिर तांता लग गया, सिलसिला शुरू हो गया एक से बढ़कर एक गीतों का। ऊंची हवेली, रानी रूपमती, तूफान और दिया, दो आंखें 12 हाथ,

0: जय चित्तौड़, गूंज उठी शहनाई, सारंगा, नौरंग, कितने नाम गिनाए।
1: जी हाँ,
0: बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का एक गाना है। ये कौन चित्रकार है?
1: वो तो अमर गीत है। वैसे तो पंडित भरत व्यास के लगभग सभी गीत अमर हैं। कौन भूल सकता है ए मालिक तेरे बंदे हम। और एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक फिल्म भी भरत व्यास जी ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था रंगीला राजस्थान, जो 1949 में आई थी। श्रोतो, पंडित भरत व्यास को आज हम स्मरण कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। 4 जुलाई 1982 को वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए थे और हम आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं के स्मरण में उन्हीं की एक रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: अवश्य।
2: मैं आज आपको अपने मन पसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पांवों को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहां पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नरक बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा। क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया। क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की। वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है।

ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है, इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही से लिखे हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को एक चित्र सती सावित्री के लिए दिए।

की तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लता जी और मन्ना डे ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ।

0: क्षमा मैं भूल हूँ। एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भित पंक्ति लगती है मुझे ये इस गीत की।
1: क्या बात है मनीषा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया जाए
0: जी,
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर
0: हाँ।
1: बनाता है, और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी कलाकार, और
0: हाँ।
1: इस पूरी तस्वीर के लिए जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है, असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनाने की प्रक्रिया की बात
1: शायद
0: की।
1: इसीलिए फिल्मों को पहले पिक्चर कहा जाता था।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिनका स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी। एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन आनंद जिन्होंने सरोकार का सिनेमा रचा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जिस सिनेमा को मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नगर थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर को मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री कामिनी कौशल की
1: जी,
0: और पंडित रविशंकर की भी ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देशक की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ, देवानंद साहब और विजय आनंद जी के बड़े भाई चेतन आनंद पिशौरी लाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की थी
0: जी,
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया, बाद में डून स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे, और इसीलिए इतिहास में बहुत अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा था अपनी फिल्म के लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था,
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को, और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था और उस फिल्म का नाम था राजकुमार, जो 1954

0: 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद चेतन आनंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस जमाने के लगभग सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
1: जी, 1949 में अपने भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकेतन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतन आनंद जी ने हिमालया फिल्म्स की स्थापना की और उसके बाद का जो उनका पूरा सिने संसार है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतन आनंद ने बनाई और हमारे सामने ये सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका हम नाम लेना चाहेंगे वो थी फिल्म हकीकत। और हकीकत के ही एक गीत की मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है,
1: वही जो लता जी के स्वर में है।
0: जी हाँ, उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्ड सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।
1: चलिए।

0: हकीकत का ये गीत हमने सुना, हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मनीषा जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लीजिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन आनंद, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली रिलीज्ड फिल्म थी राज।
0: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कंपटीशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोता, हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं चेतन आनंद साहब की, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, और यकीन मानिए उस आवाज को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिल्मकार की आवाज हमारे पास है। आइए हमारे साथ आप भी सुनिए चेतन आनंद जी द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा, और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका, और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक दो फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप में से बहुत से भाई इस वक्त

हर शख्स की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा कि उसका कोई इंतजार करता रहे। कई ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई रूप होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूप खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बोल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया है।

0: अंत में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में, फिर कश्मीर और सियालकोट और लाहौर के सेक्टरों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की।
1: कर चले हम फिदा जान तन।

0: साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: इसके बाद कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड हमने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चेतनानंद साहब ने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, क्या किया था, क्योंकि बच्चे को शूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बारे में बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई थी, वो भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये एक फिल्म मेकर की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए कि ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल फिल्म। एक छोटे से 15 महीने के बच्चे को आप सड़क पर छोड़ दो, और वो भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते थे इसको, और छुपा छुपी वो कैंडिड कैमरा लेके उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट की है पिक्चर उन्होंने, और कैमरा को कलम बना दिया उन्होंने, यू नो, कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि बच्चा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, उसको छोड़ देते थे। वो कभी कभी यूं करके देखता था कि बलून वाला आगे तो धड़ रोड क्रॉस कर देता था, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सर करते करते एक मंदिर में घुस गया, वो शॉट है फिल्म में।
5: फिर उन्होंने ट्रैक पर भी गया,
4: नहीं वो तो वो प्लान था, छोटी छोटी चीज़ें प्लान थी। वो ट्रैक पर ले जाना, वो जहाँ सो जाता है, फिर वो एक कपल लड़ाई कर रहा है, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाती है, उसको भूख लगी है, ये प्लान है, वो छोटी छोटी चीज़ें प्लान है। बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बूज के खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है, और सड़कों पर चल रहा है, गोले वाले के पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पीना चाहता है, ये सब स्पॉन्टेनियसली चीज़ें उसने, बच्चे ने खुद किया था ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते थे वैसे वैसे बनी है। स्पॉन्टेनियस सिनेमा था वो।

0: इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभूति को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक, जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अजीजुन नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत से बंगाली और उड़िया गीतों में भी उनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओ, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अजीज साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल की बात है ये, और एक झलक हम रथ यात्रा के गीत की सुनते हैं
0: अवश्य।

0: मोहम्मद अजीज साहब के बारे में और कुछ बातें अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से ही वे रफी साहब के बहुत बड़े दीवाने थे, बहुत बड़े फैन थे, और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे, और उन्हें सबसे पहला मौका जो मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाना गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना, और वो भी पहले ही ब्रेक में, ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना था, बहुत ही हिट था उन दिनों, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे।
1: जी हाँ,
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक वो गा सकते थे, और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है।
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत सरल स्वभाव के मुन्ना अजीज, यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है श्रोताओं। जब वे विविध भारती के स्टूडियो में आए थे तो बिल्कुल उसी सहजता और सरलता से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गा गए कि आज भी हमारी यादों में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अजीज साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आपको कैसा लग रहा है विविध भारती में आकर?
1: विविध भारती के साथ तो बचपन जुड़ा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, जब तो रेडियो ही थे, विविध भारती ही था। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता था और आज विविध भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन कैसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप, सादा लोग बिल्कुल, और ये ग्लैमर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं
0: जी।
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब भी मैं कभी भी किसी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता था तो मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था
0: जी।
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा, जो आम तौर से लोग बहुत ज्यादा सीख कर गाते हैं, उस तरह मुझे एक गॉड गिफ्ट था कि मुझे इतनी समझ थी कि कहाँ कैसे गाने को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है
0: जी।
1: उसकी हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना, इस तरह बचपन से मुझे काफी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ना एक दिन कुछ कर पाऊंगा,
0: कामयाब होंगे
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर BCOM तक पढ़ाई की, खींचा तानी करके।
0: अच्छा।
1: घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं इधर उधर गाता था और उनको, मेरे वालदेन को जब पता चलता था कि अरे उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको तो खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नजर नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तक तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं, तो मैंने फिर भी काफी साल तक स्टेज प्रोग्राम किए, बाकायदा अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है हमारी शुरू से, एक मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो वक्त बर्बाद नहीं करना है,
0: मुंबई चले।
1: हाँ, बॉम्बे आने के बाद फिर 2 साल स्ट्रगल रहा और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्मों के गाने मिलने लगे, कुछ 8-10 गाने गाए होंगे कि फिर अचानक एक ब्लास्ट हुआ। यानी मुझे अचानक सुबह सुबह किसी ने आके कहा, अब भी चलो तुमको अन्नू मलिक के यहाँ जाना।
0: किसने कहा था?
1: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है उससे, पप्पू कश्मीरी है, उनका म्यूजिशियन था वो, तो मुझे सुबह सुबह उठा के ले गया।
0: अच्छा।
1: रिहर्सल करवाने के लिए कि 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग है फिल्म मर्द के लिए, अमिताभ बच्चन।
0: अच्छा।
1: मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरे ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, मुझे कहा गया कि भाई आप को इस तरह गाना है कि बस गाना रह जाए, नहीं तो ये गाना डब हो जाएगा। खूब रिहर्सल वर्सल करके मैंने 3 बजे से गाना गाया, तो रिस्पांस इतना अच्छा था, क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी कि वही म्यूजिशियंस दूसरी जगह जाते थे और जाकर
0: जिक्र करते,
1: हाँ, कि अरे फला एक नया लड़का है उसने कमाल गाया। तो अभी जैसे अन्नू मलिक जी के यहाँ से बजा के यही म्यूजिशियन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचमदा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह बात फैल गई। यानी ये फिल्म, ये गाने रिलीज होने से पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से सब जगह गाने लगा।
0: अच्छा, मोहम्मद रफी साहब पर एक गाना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, तो कैसे मिला
1: इसका
0: था?
1: तो कमाल है, आपको मैं एक पहले से बताऊं एक बात, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूं और हूं और आगे भी रहूंगा,
0: रहेंगे।
1: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानता हूं। क्योंकि जाहिर है कि बचपन से जिनके गाने गाकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सबसे पहले गुरु वही हैं। आज भी जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाने के बाद भी कभी कभार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठ के, तो आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मीकांत जी के घर,
0: जी जी,
1: लक्ष्मी जी थे, प्यारे जी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू वर्मा फाइट मास्टर, डायरेक्टर शशिलाल नायर, कि एक सिचुएशन

0: निकली है कि 31 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बरसी है और उसमें अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज होना है।
1: अच्छा,
0: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गा रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी बनी, अब सब लोग बात कर रहे हैं कि इस गाने को गाएगा कौन। तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कही है या रफी साहब की चाहत थी क्या थी कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना जो है ये मुन्ना गाएगा। मुझे मुन्ना कहते हैं ना
1: जी,
0: प्रिट नेम है। अच्छा। बट मोहम्मद अजीज मेरा नाम है। तो बोलते कि ये गाना वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाया गया और मुझे गाने का मुखड़ा सुनाया गया कि न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत में कोई सच्चाई थी कि ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, कोई 11 बजे शुरू हुआ रात को रिकॉर्डिंग
1: जी,
0: और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है। तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर। इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाने सुनते भी नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं क्योंकि रोज का काम होता है। वो सारे के सारे लोग गाना सुन रहे थे और रो रहे थे। एक माहौल ही एक तो सन्नाटा छा गया।
2: न फनकार तुझसा

0: अमिताभ बच्चन साहब का क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व. गाना जब बनता था ना तो जब भी वो अक्सर आते थे लक्ष्मी जी के यहाँ, सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे
0: जी. कभी कोई खास सलाह सुझाव दिया हो जो आपको पसंद आया? अच्छा
1: नहीं, अमित जी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी पे हम लोग फिदा रहते हैं और क्या
0: जी.
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते हैं लोगों को
0: जी.
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे. बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है.
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने गाए हैं?
1: आपको बताओ, मैं दिलीप साहब और अमित जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने. और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव तक सबके लिए गाने गाए
0: जी.
1: और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया
0: जी, जी.
1: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ पूरा हो गया जी, बिल्कुल.
0: अच्छा मोहम्मद अजीज साहब, नौशाद साहब से जुड़ी हुई बात है वो ये कि किसी शो में आपने उनके सामने परफॉर्म किया था?
1: मैं एक दफा गया था बिहार, तो वहाँ पे कोई एसडी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था
0: जी,
1: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था. ये बात है 1976 की.
0: अच्छा.
1: तो वहाँ तो मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया कि पहली बार मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन था. और वहाँ मैंने तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने उन्हें गाए, नए लड़ जाई है सब
0: जी,
1: बिहार
0: जी.
1: का सिचुएशन देखकर
0: जी.
1: पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको जरूर अच्छा लगा होगा. ये कब? जब मैं उनसे 86 में यहाँ बॉम्बे में मिला. देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल चुके हो.
0: अच्छा.
1: वहाँ गया मैं 76 में, मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर. और उनका बड़ापन भी कहिए कि मेरे जैसे अदना एक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया. नौशाद साहब जैसे संगीतकार को किसी

0: अब आपके नॉन फिल्मी एल्बम्स के बारे में
1: एक बहुत साल पहले वेनस से निकला था मेरा कशिश गजलों का, सरदार मलिक साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक टी सीरीज ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टी सीरीज से निकली जब से देखा चेहरा तुम्हारा, इस तरह बहुत सारे एल्बम्स निकले हैं। एल्बम 60-70 हैं कवालियों के,
0: जी जी,
1: नात मन कवच जो होते हैं ना उसके। मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी,
1: और लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितनी मेल वॉइस है, जय हनुमान एक सीरियल आई थी संजय खान साहब की, उसमें जितनी भी मेल वॉइस है वो सब मेरी है।
0: अच्छा,
1: वो सारे हनुमान चालीसा सारा, टाइटल भी आपने सुना होगा, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, है ना, वो सब मेरे गाए हुए हैं। इतने मुश्किल पूरा चौपाइयां दोहे जो जो थे वो सारे वो सब मैंने गाया। मैं इसके लिए रविंद्र जैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण ये सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म हेना में भी मुझे गवाया।
0: आपके गानों की लंबी फेहरिस्त है, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनवाए कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है, और एक एक फिल्म में तीन तीन चार चार गाने गाए हैं।
0: अच्छा,
1: आज जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर्स होते हैं
0: जी,
1: अभी जैसे 10 बहाने करके ले गया दिल तो उसमें 4 सिंगर है, तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं 4-4, 5-5 गाने एक फिल्म में गाता था
0: जी।
1: तो आप सोचिए फिल्मों का गाना में तो मेरा 2,500 है, और 4,000 के करीब मेरे ओडिया गाने हैं, सिर्फ ओडिया गाने
0: जी जी,
1: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10,000 के ऊपर गाने हैं मेरे।
0: कुल कितनी भाषाओं में आपने गाने गाए?
1: 17 या 18।
0: चलते चलते कौन सा गाना नजर करें श्रोताओं के लिए आपकी ओर से इस वक्त?
1: खुदा गवाह का गाना सुनाइए।

0: मैं वापस आऊंगा, खुदा गवाह फिल्म का ये गीत अजीज साहब के रिकॉर्डिंग में हमने सुना।
1: अफसोस कि कोई वापस नहीं आता इस दुनिया को छोड़कर जब चला जाता है, क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं और आपके साथ उतने ही जज्बाती भी हो जाते हैं।
0: मगर मनीषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस आएंगे विविधा का अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आपको छोड़ के जाते हैं हम यादों के गलियारे में और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को आपके मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का। नमस्कार।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का

0: जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जमाने को दिखाना है। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बरसात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: समीर के बोल आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। दामिनी फिल्म का ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और यीशु दास की आवाजों में दौड़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज में ये गीत।

दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विनोद राठौर और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल, विविध भारती।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में क्रिमिनल फिल्म का ये गीत आपने सुना, इंदिवर के बोल, एमएम क्रीम का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों के महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या होंगे, कौन से शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जा सकते हैं। तो आज की इबारत, हालांकि आपने में से बहुत से लोगों ने तो इबारत पढ़ ली होगी लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम एक बार बता देते हैं वो इबारत कि कोई फुर्सत के पल ढूंढता है तो किसी को नौकरी की है तलाश, कोई सबसे दूर होकर खुश होता है तो किसी को चाहिए सब आसपास, उम्मीदों आशाओं चाहतों और जरूरतों का फैला हुआ है आकाश, कभी यहाँ दुख की बदली छाए तो कभी फैले भोर की उजास। क्या कहता है आपका मन, क्या है मुकम्मल जहाँ किसी के पास। तो ये है आज की इबारत जिनमें से शब्द चुनने हैं आपको और इन शब्दों को चुनकर आपको बताना है कि कौन से गीत शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और बता भी दिया है कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक गीत जो आपकी और हमारी लिस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है बातों के साथ भी और जज्बात के साथ भी, वो गीत तो कार्यक्रम का पहला गीत ही बनने वाला है। वैसे हमारे साथी कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यही है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी इन अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वो है अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तानों में ही अक्सर सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और साथी कहते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जो गर्मी में सूरज से निकलती कड़ी धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव ढूंढता है तो ठंड के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए वही सूरज की तलाश करता है। इसलिए कहा गया कि ये जीवन है, जीवन का यही है रंग रूप। बिल्कुल सही बात आप दोनों ने कही। हम लेकिन आपसे ये पता करना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई सारी चीजें अधूरी अधूरी रहती हैं जीवन में, या कहीं ना कहीं हमारा मन इस तरह से चलता है या इस तरह से

कहें कि काम करता है कि उसे हर चीज अधूरी लगती है, जो भी चीज पूरी हो जाती है उससे आगे क्या, ये सोच जब हमारे मन में होती है तो हमें कई चीजें अधूरी लगती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और ये भी बताइए कि आपको किस चीज की तलाश है, जो भी तलाश हो सकती है हमें बताइए। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है कि इसमें आवाज किसकी है, क्योंकि हमें तलाश है इस जवाब की।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। कल राजस्थान में श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज की खरीद के मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। हरियाणा में बहादुरगढ़ पुलिस के विशेष कार्यबल तथा दिल्ली पुलिस के गुप्तचर रोधी विशेष प्रकोष्ठ की संयुक्त कार्रवाई में आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 इनामी बदमाश ढेर हो गए। दोनों हांसी के चर्चित जिम संचालक कपिल हत्याकांड में वांछित थे और उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि एक सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को बहादुरगढ़ क्षेत्र में उस समय घेरा गया जब वो किसी गंभीर आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने पुलिस के दल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की गई और मुठभेड़ में दोनों आरोपी तथा अंकित नाम का एक पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान 4 पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी जिससे उनकी जान बच गई। उपचार के दौरान दोनों इनामी आरोपियों की मौत हो गई जबकि घायल पुलिस कर्मचारी की हालत स्थिर है। मारे गए आरोपियों की पहचान जिला हिसार में टिब्बा दानशीर निवासी, गांव जाखोड़ निवासी हिमांशु के तौर

0: पर हुई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप हरियाणा पुलिस संगठित अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले प्रत्येक अपराधी के विरुद्ध पूरी दृढ़ता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वल्लभगढ़ के विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने आज सुबह पंडित प्लेस तिगांव रोड के निकट बड़ी सीवर लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना पर लगभग 75 लाख रुपए की लागत आएगी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल से 8 जुलाई तक भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून के आगमन के बाद कई जगह हुई बारिश से लोगों को गर्मी में राहत मिली है, लेकिन उमस में भी वृद्धि हुई है। मानसून की इस वर्षा से किसानों को भी फसल की बुआई में लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून तो होता ही है, वरना तो हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। जैसे कि इस गीत में भी है ढूंढने की कोई बात। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत और फिल्म में कौन है इस गीत में नायक।
2: डियर सर, सेवा में

नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कह रहे कि आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन

शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह क्या बात आपने कही। हमारे कौर साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जो जमीन मिली है वो, जो आसमां मिला है उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ, तो शायद अपना अधूरापन भी पूरा लगने लगे। वहीं हमारे साथी ने कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ता है, जब धूप तेज होती है तो बाहर जाकर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये एक चाहत होती है कि कुछ पल सुकून के मिले। एक गीत मुझे बहुत याद आता है, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस तरह से उन्होंने बहुत से गीतों का उल्लेख किया। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, हर किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहत है, अपनी कहानी है। कोई फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है, तो कोई काम करके खुशी ढूंढता है, तो किसी का संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख के बादल घिराते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यही है कि हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कोई अपनों की भीड़ में अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन का चक्र है। इसलिए मुकम्मल जहां शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो अपने आप में संतोष, कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है, उसके लिए ये हर अधूरापन एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा, और वाकई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन जैसे कस्तूरी अपने कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन भर, जबकि वो उसी के पास होती है, तो हर शांति जो है वो हमारे अंदर ही है। और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताइए जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज़ में है, नायक नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हमने पूछा था भाई कौन नायक नायिका हैं इस फिल्म में, बता देंगे तो हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी इस फिल्म में नजर आती है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, सर्दी में गुनगुनी धूप का आनंद लेना तो आज भी लेते हैं। तो ठीक है, वो दिन लद गए तो उसका कारण तो हम बाद में जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं भाई। लेकिन हमारी साथी कहती हैं कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते, न सपने, न लोग, न जिंदगी, हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। शायद यही जीवन है, तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ ना मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में कुछ कमी है तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह, क्या बात आपने कही। हमारे कौर साथी कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है। जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है। जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी न किसी चीज की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह, आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरी चाहत जन्मती। इसी तरह इसी आकाश के नीचे कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज ढूंढी है बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो, ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज की तलाश सबसे ज्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए, फिल्म का नाम भी।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, कि हमारे जीवन में हर चीज़ मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज़्यादा किसी चीज़ की चाह नहीं है, या जिन

चीजों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी, तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफर जीवन रंगमंच है। इससे पल इसमें हर पल हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए थे, लेकिन घर की होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धनपत्नी ने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट पकड़ा दी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आज सभी आइटम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई है। तो और वो कह रहे हैं कि मैंने भी कहा जो हुक्म मेरे आका, पर मार्केट सुरीला सफर प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर देने हैं, क्योंकि रविवार को होता है ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन। और आप कैसे बताते हैं अपना ये छुट्टी का दिन भी हमें बता सकते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने आंगन में चार पहिया खाट पर आसमान के नीचे तारों को देखकर मीठी नींद में सोने का आनंद खूब लिया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल ढूंढता है इस गीत के अंतरे में जो जो बातें हुई वो बहुत सी चीजों को, बहुत सी उम्मीदों को बताते हैं। और उनका कमेंट थोड़ा खो गया है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की उम्मीद, इस तरह की ख्वाहिशें होती ही हैं, उसमें से कुछ तो ज़रूर पूरी हो चुकी होती हैं बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों के लिए बाकी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस गीत के विषय पर आपने जो पूछा उसकी एक बात वो है, वादियों में खामोशी सुनने की उन्हें चाह है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये चाह जल्दी ही पूरी हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नेहा जी, इच्छाओं की सूची पहले बहुत लंबी थी, अब थोड़ी छोटी कर ली है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब तलाश समाप्त होती है तो दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। आम चीजें भी खास लगने लगती हैं, सुबह की धूप, हवा का झोंका या किसी की मुस्कान, हर छोटी चीज में एक गहरा रस महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई जब हम अपने जीवन में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं, नजरिया बदलते हैं, तो बहुत सी चीजें भी बदलती जाती हैं, हालांकि वो वही होती हैं जो पहले भी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज की तलाश नहीं है तो कोई एक ऐसा ही गीत हमें मिला है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी आज की लिस्ट क्या थी काम की, रविवार की कोई काम की लिस्ट बनाई थी आपने छुट्टी की, या आपका आपकी छुट्टी सप्ताह के किसी और दिन होती है, ये आप बताइए। और ये भी बताइए कि किस फिल्म से ये गीत आपको

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवी से लिखा, रोशन का संगीत, मन्ना डे, आशा भोसले, बत्तीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया, अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वही हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुशनसीब हूँ जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया, पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुनना सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना। ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं, और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना, इस फॉर्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का जरूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाजार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता, हमारे यहाँ बाजार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मॉनसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग एक घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई है, इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिजायर लेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है, सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान जरूरत से ज्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के जमाना देखा। तो ये इनका कहना है। साथी कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा भाई, सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी कौर साथी कहती हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती है और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अदद नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद यही शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते, पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे कौर साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफी। असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं। कोई कहे तू है ना टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही। हमारे कौर साथी ने इतवार का क्या प्लान है ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें बताइए। और हमें ज़रूरत है कि इस गीत को किसने गाया है ये भी आप हमें बताएँ।

रहते। किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने कि आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं, इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कह रहे कि आज इतवार है, फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में, गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी उनके फरमाइश की। एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता, तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर।

और हमारे एक और साथी कहने कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूँ, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे एक और साथी कहने कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा, वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कहने कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की, क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी का देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने एक किस्सा लिख भेजा है कि जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईने के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने सामने आती गई और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि चार हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं, क्योंकि चार हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ज़रूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति इन ज़रूरतों को ज़रूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया, फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना, के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक लिंटोन की आवाज़ में आपने ये गीत सुना, इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ। भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की जरूरत है क्योंकि हम अकेले हैं, कहने को तो सभी ही हैं इस परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। मैं पत्नी को मिस कर रहा हूं जो अब नहीं है। बिल्कुल आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं। आपको समय पर चाय नाश्ता खाना तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से जरूर मिल जाएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती है और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूं। भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं। हमें बताइए कि एक किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं।

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हुर्मुज जल डमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हुर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन

0: सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल तंबानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
1: सिग्निफिकेंस इज इमेंस। भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत के मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका

0: इलाज चल रहा था, आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन भाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: तीजन भाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन भाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
2: दोनों जने मिल के सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
3: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
1: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन भाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल राम इंडेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन भाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन भाई का निधन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति

0: मंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहू बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: अनमोल यादें।
1: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह,

जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं। होशियार।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: एक लड़की है जिसने

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में पसंद का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले जान लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ सूर्यकांत सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी के पसंद पर सुनिए ये गीत जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहु बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचनगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो बात।

दस नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मन चाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किन की फरमाइश पर शामिल होने वाले ये बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंकी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए, ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्निमित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्निमित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझमें भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
3: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
2: कौन रानी हीरावती?
3: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों है?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
4: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
3: अरे बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र के साथ पूरी।
5: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
6: भला हम कौन होती हैं
5: महाराज के साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
6: चलो।
3: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
4: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
2: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
3: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है, तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
2: परंतु देवी,
3: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
2: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
3: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़िका, हम चलेंगे।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना।
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया महाराज, मिल गया। कोई छिपकर सुन न रहा हो, कान में सुनिए। मैं नाग को बांध करके नाग मुद्रा लेके
1: जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझाए देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आज ये गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?

0: आज तो कुछ कम है देव।
1: अरे श्यारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
2: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया महाराज।
3: ये तो बहुत बुरा हुआ, प्रतिहारी भागकर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
4: जैसी देव की आज्ञा।
3: मित्र गौतम कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
2: महाराज मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल शरीर का सांप ने मुझे डस लिया महाराज। ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
0: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
2: अरे फादर काल ने मुझे दबोच लिया।
3: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
2: मेरा तो अन्नंगा अकड़ता जा रहा है, सारे शरीर में गलता जा रहा है।
0: हाँ इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है, अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
1: अरे गौतम तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
2: महाराज मैं आपका पाल सका हूँ, सुना तो मेरे बात मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
3: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
4: महाराज महाराज वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा महाराज।
3: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
4: देव की कैसी आज्ञा।
2: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुकी हो वो क्षमा कीजिए।
0: नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
4: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो, क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
0: मेरी मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
4: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम, आइए।
5: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमदवन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन?
1: हरि गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
2: ये देखो महारानी की अंगूठी।
1: अंगूठी तो उन्हीं की है।
2: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो। ओह, यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
1: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
2: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
1: ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
3: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
2: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र गृह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
3: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है। अच्छा सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
1: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
0: स्वामी की जय हो।
1: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी।

0: आज इस चित्र में जी भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ। क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
1: ये
0: छोटी रानी इरावती है।
1: ओ
0: सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक सा नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
1: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर डाह करने लगी है। अच्छा, तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
0: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है। तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
2: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
3: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रूठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी की जय हो।
3: प्रिय,
4: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
3: मित्र, क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे। सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न की कभी भेंट नहीं हुई। महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
3: उत्तर क्या दें बकला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
5: अरे बकला वालिका, उधर देख, उस नन्हे अशोक के पत्तों को वो हिरन चले जा रहा है। आ, उसे भगाने चल चले। महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह के द्वार पर हूँ।
0: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
1: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हाल चाल जान लें। और
1: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
1: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही चक्कर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र देखती हूँ।

0: देवी वो देखिए, आर्य गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका।
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न ब्राह्मण,
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंभे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक ब्राह्मण पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
5: महाराज रुकिए, उधर न जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: मैं कहाँ है सांप?

0: जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए।
2: कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
3: देवी इरावती,
1: सखी बकुलावली का ये कैसा है?
2: बकुलावली का, तुझे बधाई है। दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका, भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
4: जो आज्ञा।
5: ओह, तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। तुम्हें से छूटा हुआ कबूतर कैसा हमने आके रहा?
3: इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी, क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
4: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सखी बकुलावली का, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
2: अच्छा, तो ये सब इस बामन के करतूत है? क्यों, प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
6: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
2: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
7: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहरे अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहरे अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
8: सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीरसेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार सेवक भेजे हैं।

0: विदिशापति महाराज अग्निमित
1: ब्रह्मगमन उत्सव में बला रहे
0: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निमित
1: ब्रह्मगमन उत्सव में

0: जय हो। विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव।
2: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की साथ पूरी हो।
0: आर्य पुत्र, फूलों से लदे सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
3: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
1: ले आओ।
3: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
4: महाराज की जय हो। महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
4: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो

0: अपने लिए चुन लो।
1: मालविका आगे थी, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
2: अरे राजकुमारी आप यहाँ, जय हो
3: राजकुमारी, जय हो।
1: अरे अरे मालविका राजकुमारी,
0: मालविका राजकुमारी।
2: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
0: कैसे?
2: सुनिए महाराज, आपके सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
1: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
0: भद्रे बताइए, ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
2: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
0: फिर क्या हुआ?
2: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
4: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
0: भगवती आप?
2: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक जान पड़ती है।
4: हाँ वही है। प्रणाम भगवती।
5: कल्याण हो।
0: भगवती क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
4: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
0: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
4: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
1: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है, यहाँ तो दिन में जैसे रात हो गई हो।
0: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
4: भैया आप भी तो।
0: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
1: अरे श्री क्या हुआ, क्या हम लोग एक रुक क्यों गए?
6: जान जारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
1: वही हुआ ना जिसका भाई था,
4: डाकुओं ने खेल दिया है।
7: चाहिए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।
1: हमारे सैनिक ये करके खड़े हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लघु लुहान होकर इधर आ रहे हैं, अरे डाकुओं ने भैया को अकेले ही खेल दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़ो। हम असहाय रह गए।
4: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
0: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
1: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
4: ऐसा ना कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
1: वो क्या?
4: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्य

0: अच्छा। राजकुमारी ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधी रात का शासक बना दिया है, उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
1: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र, लाओ देखें।
0: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकट पूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में 1 वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ। फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
3: महाराज, महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
0: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
2: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञसेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
0: जयसेन,
1: आज्ञा देवी।
0: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, ये कोई विघ्न न डाले।
1: देवी की कैसी आज्ञा है।
0: मालविका, इधर आओ, प्रस्तुत हो देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लजा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
4: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजा ही करते हैं।
5: श्रोताओं, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
6: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं।

0: एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलन के रोल काफी किए, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
2: बिल्कुल नहीं, इट वाज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वाज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वाज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था बटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता, तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूँ या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूँ तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूँ। बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
2: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,

0: थर्ड जेंडर
1: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है। अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूँ, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
0: यहाँ गाना सुनते हैं।

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है वो जब किया था हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था पापा जो प्लेज वगैरह करते थे बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है आज भी है तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है बहू पैसे कमा रही है बेटा नाटक वगैरह करता है इससे थोड़ी ना घर चलेगा ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो शो हो तो बिल्कुल नहीं जाते थे लेकिन सब लोग शहर में कहते थे अरे वाह वाह वाह तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है ये करता है वो करता है तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं चलता हूँ देखता हूँ दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने और वो गए वो प्ले देखने और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे तो वो रुके रहे वहां पर और जैसे ही पापा रात में आए घर पे उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से तो नाचा ची काम कराई तुला इस तरह के काम करोगे तुम हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा पर तब तक काफी पानी बह चुका था लॉर्ड ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है चलो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी
1: कि एक बार फिर से वो जनाना
0: जनाना रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में तो उनका ध्यान पूरा था कहाँ क्या चल रहा है मेरा बेटा क्या कर रहा है बहू क्या कर रही है पोतिया क्या कर रही है ये सब उनका ध्यान था बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो तुम्हें यही करना है तो करो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और वो काफी सराहा गया महारानी वाला जो रोल है उसकी आज तक उसकी रीलें चलती हैं और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है
0: ओह यस ऑफ कोर्स हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है पुराना मंदिर है ये काफी सारी फिल्में हैं
1: जो 80s वाला दौर
0: हाँ हाँ हाँ 80s वाला पूरा 83 से आगे वाला पूरा दौर सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म
1: हाँ ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: तो है। वो चलती है तो ये बहुत ही सही बात है और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे पापा और धर्म जी या पापा और

0: मिथुन दा कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है, शायद अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे, और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
1: हाँ
0: काला नाग, राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ शुरू।
1: हाँ,
0: था।
1: और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं, नाग काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट, ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को खुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल, उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है।
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है।
0: करेक्ट,
1: वहां
0: करेक्ट।
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ।
0: करेक्ट,
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था।
0: बहुत ही और उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था।
1: ऑफ कोर्स,
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट। सब लोगों को ऐसा जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे, और पापा बहुत कूल हुआ करते थे। मतलब हाँ ठीक है, ओके, ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में

0: उनकी एक सशक्त मौजूदगी है अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं। वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है,
1: पूरा पूरा। दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे। उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना है, अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट, तो प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक। लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म की बात। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
0: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी है तो थोड़ा डिफरेंट है?
1: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। और मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है। और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
0: ओहो, करेक्ट।
1: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूँ फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं तो ये कभी कभी होता था। पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
0: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
1: बहुत ही सिंपल था, मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से।
0: अच्छा।
1: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
0: जरूरत,
1: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट एक एक घूट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन,

0: वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना, बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी, इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो, और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास, और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है, या आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे।
1: सख्त मनाही।
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया, तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो 2-3 दोस्त, करीबी दोस्त है, उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्होंने देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहाँ पर बीबी का मकबरा भी है, तो एक तो जहाँ पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहाँ पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब पकड़, 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे, और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए।
1: अरे अरे अरे।
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए, वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते।
1: ओहो।
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन, पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे

0: चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी,
1: वो उनके पंच आते
0: थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे, तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तलमला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
1: ओके, वो जवाब बाद में,
0: हाँ वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
1: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी,
0: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
1: बिल्कुल
0: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुनदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
1: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
0: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
1: आंटी नंबर वन,
0: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ काम किया,
1: बिंदु जी के साथ, सो रहे हैं और वो जगाने आती हैं।
0: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: अर्धसत्य
0: दिखाऊंगी, ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत ही अलग,
1: क्या लीक थी वो?
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर लेकिन वो इतनी ओवर द टॉप नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी।
1: यस,
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो, मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था।
1: अच्छा।
0: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं, फिर दिलीप ताहिल जी थे उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट

0: फिल्म, ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी.
1: बिल्कुल.
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है.
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
0: प्लीज.

0: ये वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां इसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोगी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकटनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए। बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोगी की थी। दोगी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी।
0: तब तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को मिला नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
1: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोगी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोगी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
0: राइट,
1: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
0: जी।
1: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
0: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
1: बहुत अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है। तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकत

0: ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं. आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था. मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी. कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था. इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे. अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है. तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हम अभी हमें कैसे मोल्ड करना है. एक्टर का से बहुत कम रह गया है. तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया. इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर वन मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली. एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी. तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
1: बिल्कुल.
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, एनएफडीसी की ही फिल्म है
1: जी.
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर. तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहाँ के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफ़ी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है. तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म.
1: बिल्कुल. यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। उजाले।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारे केंद्र से आप सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 6:20 पर गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 से 14 तक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे श्री श्यामलाल चूड़ामणि।

थारी संदेश मारे गीत कार्यक्रम सुनिए शाम 6:30 बजे। श्रोताओ आज शाम 7:30 बजे से आप सुनेंगे आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप मैच के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे शाम 6 बजे, 6:05 पर, रात्रि 8:45 पर, रात 9 बजे और उसके बाद समाचार रिले होंगे रात 11 बजे और 11:05 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। हम शाम 6:10 पर रिले करेंगे। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें आज शाम 7:30 बजे T20 महिला क्रिकेट विश्व कप मैच के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम्स के बीच आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। FM बैंड 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, गाने नए पुराने।

गाने नए पुराने कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप की ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की राहें तब और हसीन हो जाती हैं जब कोई अपना कदम से कदम मिलाकर चलने वाला साथ मिल जाए। किसी ने कहा है कि वो जो सिर्फ सफर का साथी नहीं बल्कि हर धड़कन की धुन बन जाए, जिसकी मुस्कान से सुबह महक उठे और जिसकी बातों से शाम खिल उठे। कभी प्यार आंखों से मुस्कुराता है तो कभी शरारत बनकर दिल के तार छेड़ जाता है। ऐसे ही मीठे एहसासों से सजाया ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्तों, और इस गाने में मोहब्बत है, नज़ाकत है और दिल को छू लेने वाली माधुर्य है। एहसास कीजिए ना।

बहुत प्यारा गीत आपने सुना। मस्ताना फिल्म का ये गाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल संगीतकार लक्ष्मी।

ካንት ቢያሪላል दोस्तों कभी कभी दिल की सबसे गहरी बातें लबों तक नहीं आ पाती, बस आंखों की खामोशी में उतर जाती है। वो कहा है ना कि मोहब्बत जब अपनी परवान पर होती है तो हर धड़कन एक ही नाम पुकारती है, हर हवा का झोंका कोई पैगाम लेकर आता है और हर खामोशी में एक मीठी सी आवाज गूंजती है, सुन जरा।

दोस्तों अभी आपने सर्कस फिल्म का ये दो गाना सुना, पपोन और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, देवीश्री प्रसाद का लिखा ये गाना आपने सुना। और भाई दोस्तों कहते हैं ना कि मौसम सिर्फ आसमान में नहीं बदलता, कभी कभी मौसम दिलों का भी बदल जाता है। आप देखें ना कि जब हवा में ठंडक हो, बादलों में कोई अनकही दास्तान हो और यादों की बारिश दिल की चौखट पर दस्तक देने लगे ना, तो हर धड़कन बस यही गाना गुनगुनाती है।

दोस्तों, लोफर फिल्म का गाना सुना आपने मोहम्मद रफी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोतो दोस्तों, समय कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गाने नए पुराने अपने दोस्त प्रदीप के साथ। किसी ने कहा है ना कि इश्क जब दिल में उतरता है तो फिर हालात नहीं एहसास बोलते हैं।

कभी एक मुस्कान उम्र भर की खुशी बन जाती है तो कभी एक जुदाई पल भर में सदियों का दर्द दे जाती है। यही तो मोहब्बत का रंग है जो हर धड़कन को नई कहानी दे जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हाले दिल पूछने वालों से इतना ही कहेंगे, हाले दिल पूछने वालों से इतना ही कहेंगे, मुस्कुराहट के पीछे भी कई अफसाने रहते हैं। और भाई जब प्यार अपनी सारी हदें पार कर जाए तो दिल बस यही कह उठता है।

जी हाँ दोस्तों, आपने बैड बॉय फिल्म का गाना सुना, पायल देव राज बर्मन की आवाज़ों में। शब्बीर अहमद के बोल थे, संगीतकार हेमेश रेशमिया। किसी ने कहा है दोस्तों कि बूंद बूंद मिलकर दरिया बन जाती है।

और दिल से दिल मिल जाए तो दुनिया संवर जाती है। रिश्तों की डोर भी कुछ ऐसी ही होती है। हर कड़ी अपने आप में छोटी लग सकती है, लेकिन जब हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ जाती है तो एक मजबूत जंजीर बन जाती है, जो विश्वास, अपनापन और एकता की पहचान बन जाती है। ऐसे ही एहसासों से सजा ये अगला गाना सुनते हैं, और कसमे वादे फिल्म का ये दो गाना है, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीतकार आर डी बर्मन।

जी हाँ दोस्तों, यही तो जीवन की असली खूबसूरती है, मिलकर चलना, मिलकर मुस्कुराना और मिलकर हर खुशी को बांटना। इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ चलिए बढ़ते रहिए अपने जीवन में, अपने खूबसूरत जीवन को यूं ही खुशगवार बनाती रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का गाने नए पुराने कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रदीप को दीजिए इजाज़त, नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे गाने नए पुराने कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 5:30 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रस्तुति अमरीक सिंह की।

0: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से प्रस्तुत साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आज के संक में संत शिरोमणि संत कबीर जयंती, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न गुलजारलाल नंदा जी की 128वीं जयंती। अपनी आंखों का किस तरह से रखें ख्याल। दोस्तों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे संत शिरोमणि संत कबीर जयंती के बारे में। सत दिनांक 29 जून को मनाई गई संत शिरोमणि संत कबीर जयंती। कबीर जयंती के बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं।
1: आज भारत की संत परंपरा एवं ज्ञान परंपरा के बहुत ही महान रत्न संत कबीर दास जी की जयंती है। उनके इस जयंती के पवित्र अवसर पर मैं डॉक्टर रामचंद्र, अध्यक्ष संस्कृत विभाग IIHS कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, उनके जीवन दर्शन के संदर्भ में आपसे संवाद कर रहा हूँ। संत कबीरदास जी भारत की संत परंपरा के महान कवि, समाज सुधारक एवं निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका जीवन का जो दर्शन है वह सत्य, प्रेम, सरलता, आत्मज्ञान, मानवता,

ईश्वर का जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसके अनुभव पर आधारित है। उन्होंने जाति पाति, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया तथा यह संदेश दिया कि ईश्वर संसार के कण कण में तो है ही है, परंतु प्रत्येक जीव के भीतर भी विद्यमान है। उनके जो चिंतन है उसके कुछ प्रमुख बिंदु, प्रमुख दर्शन इस प्रकार से है: सत्य और ईमानदारी, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान, गुरु का महत्व, प्रेम और करुणा, कर्म प्रधान जीवन, समय का सदुपयोग, अहंकार का त्याग, सभी मनुष्यों की समानता। कबीरदास जी के जीवन दर्शन को उनके ग्रंथों में आए हुए जो दोहे हैं उनके माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आज हम उनके जीवन दर्शन को समझने के लिए उनके कुछ प्रसिद्ध दोहे जो समाज में भी प्रचलित हैं और आज के इस तेजी से बढ़ते हुए युग में और ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, उनको लेकर के उनके जीवन दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। एक दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि प्रायः करके व्यक्ति दूसरों में दोष देखने का प्रयास करता है और भूल जाता है कि जितना आप दोष दूसरों में देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा दोष दुर्गुण आपके अपने जीवन में हैं। इसलिए दूसरों में दोष को देखने की प्रवृत्ति को कम करना चाहिए और अपना ही आत्मनिरीक्षण सबसे पहले करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं बाहर किसी को बुरा देखने के लिए चलता हूँ तो सच बात यह है कि मुझसे बुरा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आपको समझ में आता है कि वास्तव में मेरे अपने जीवन में बहुत सारे दोष हैं। यदि आप अपने दोषों को दूर कर लेंगे तो संसार स्वच्छ, साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। आप अपनी दृष्टि बदलिए, ये सृष्टि आपको बदले हुए दिखाई देगी। एक और दूसरे दोहे में वे समय की कीमत बताते हैं, समय के मूल्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जो काम आज करने का है उसे कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। ये बहुत बड़ा दर्शन है, खास करके आज के इस भौतिकतावादी युग में, जबकि मनुष्य प्रायः करके काम को समय पर नहीं करने की आदत अपने जीवन में टालता जा रहा है, बनाता जा रहा है, और उससे बहुत बड़ा नुकसान सामाजिक स्तर पर हमें दिखाई देता है। कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो काम आपको कल करना है उसे आज कर लीजिए और जो आज करना है उसे अभी कर लीजिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि क्षण भर में प्रलय आ सकती है और आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपके संकल्प कब पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे इसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन को यदि उन्नत बनाना है तो संत कबीरदास जी का ये जो दर्शन है, कार्य को तुरंत करने का, यह अवश्य अपनाया जाना चाहिए। एक और जगह पर कबीरदास जी धैर्य के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को धैर्य जरूर अपनाना चाहिए। बहुत आपाधापी करने से जीवन के उद्देश्य कभी पूरे नहीं होते। कई बार व्यक्ति अपने काम को करने के लिए बहुत जल्दी करता है, लेकिन यदि आप बहुत जल्दी करोगे तो जो गंभीरता चाहिए, जो उसको काम को पूरा करने में जो समय अपेक्षित है, जिससे वह परिपूर्ण होता है कार्य, वह शक्ति उस काम में नहीं आएगी। और इसलिए धैर्य के साथ में किया हुआ काम बहुत अच्छे प्रकार से पूरा होता है। वे कहते हैं, और बहुत अच्छे उदाहरण के साथ कबीरदास जी कहते हैं,

धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इतना अच्छा उदाहरण कबीरदास जी ने दिया है कि आप धीरे धीरे काम करिए, सोच के साथ काम करिए, और समय से पहले पाने की यदि जल्दबाजी करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। वे कहते हैं कि माली सैकड़ों घड़ा पानी पेड़ में सींचता है, परंतु फल तभी आता है जब उसका ऋतु आती है। एक जगह पर वे जीवन में व्यवहार में वाणी का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि हमें कभी भी क्रोध से गुस्से से व्यवहार समाज में नहीं करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। इस प्रकार की वाणी का व्यवहार हमें करना चाहिए जो शांत हो, सहज हो, क्रोध न हो। ऐसा करने से दूसरे लोग तो शीतल और शांत हो ही जाएंगे, आपका अंतर्मन भी प्रसन्न होता हुआ दिखाई देगा। एक स्थान पर कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने आलोचक जरूर रखने चाहिए। प्राय करके कोई व्यक्ति दूसरे के द्वारा अपनी आलोचना को सहन नहीं कर पाता, वो कहते हैं ये नहीं है। वास्तव में वह आलोचक ही होते हैं, वो निंदक ही होते हैं जो आपके अपने अच्छे के साथ साथ में बुरे पक्ष को बताते हैं। उससे आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इन आलोचक ही है जो बिना पानी और साबुन के भी आपको निर्मल बना देता है। एक और स्थान पर भगवान का, ईश्वर का स्मरण करने के बारे में संदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। कभी कभी हम दुख में याद करते हैं और सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं। यदि हम दुख में ईश्वर को याद करेंगे तो फिर अलग विषय होगा, पर यदि हम सुख में ईश्वर को स्मरण करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख में तो प्रायः सभी लोग स्मरण कर लेते हैं, परंतु सुख के समय में ईश्वर स्मरण करने से दुख की प्राप्ति ही नहीं होती। वे कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो इसलिए व्यक्ति को ईश्वर का, भगवान का स्मरण सुख के अवसर में भी अवश्य करना चाहिए। व्यवहार में बहुत बड़ी विद्वत्ता नहीं चाहिए। यदि आप बहुत बड़ी विद्वत्ता के साथ में प्रेम, सद्भाव, सहयोग की भावना के बिना है तो आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक बड़े ही सरल शब्दों के अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि आप ज़्यादा पढ़े या नहीं पढ़े, परंतु प्रेम, अनुराग और सहयोग का दर्शन यदि आपने पढ़ लिया तो जीवन अच्छा हो जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। एक और अच्छे दोहे के माध्यम से वे जीवन में संतोष को सबसे बड़ा गुण बताते हैं। वो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना अवश्य करिए कि आप अपने घर परिवार को भी बेहतर चला सकें और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी आप सहयोग कर सकें। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, इसका भी एक दर्शन उनके जीवन में प्राप्त होता है। वे कहते हैं माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोई। व्यक्ति जीवन में अहंकार नहीं करे तो कबीरदास जी का जो जीवन है वह सत्य का, प्रेरणा का, दर्शन का, जीवन मूल्यों का है। कबीरदास जी के दोहे हमें जीवन का प्रबंधन सिखाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं, मानवीय मूल्य सिखाते हैं, और ख़ास करके आज के समय में उनका जो संदेश है वह सत्य, प्रेम, आत्मनिरीक्षण, समय का सदुपयोग, विनम्रता, संतोष और मानवता का दर्शन है, उसको स्पष्ट करता है, जो कि आज के युग के लिए बहुत ज़रूरी है। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और संत कबीरदास जी की जयंती है। हम सबको उनके जीवन को पढ़ना चाहिए, उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और विशेष करके उनके ग्रंथों में दिए हुए जो संदेश हैं उन्हें अपनाना चाहिए। मैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे संत कबीरदास जी के जीवन दर्शन को प्रकट कर

0: का ये सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और साथियों आपको जानकारी देंगे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस इन डॉक्टर्स डे के बारे में। साथियों जुना 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस इन डॉक्टर्स डे। साथियों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस इन डॉक्टर डे के बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं।
2: मेरा नाम डॉक्टर रमेश अग्रवाल, कैंसर स्पेशलिस्ट हूं, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल क्षेत्र में।
3: डॉक्टर साहब आज दिनांक 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे मना रहे हैं, यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
2: देखिए ये जो है डॉक्टर्स डे है, जो चिकित्सक दिवस, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो वेस्ट बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर थे उनकी याद में मनाया जाता है, जिससे डॉक्टर्स को सम्मान देना, उनके जो डेडिकेशन है काम की, जो मरीजों को देखना और उसके सम्मान में ये मनाया जाता है।
3: बस जानना चाह रहे हैं कि जैसे वर्तमान का जो समय है और आधुनिकता के दौर में इस समय हम हैं, आज कहीं ना कहीं जो लोगों की सोच है उसमें बहुत सा अंतर आ गया डॉक्टर को लेके, तो वो परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
2: आज जैसे टेक्नोलॉजी का जमाना है, डॉक्टर भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और जो आम व्यक्ति है वो ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है इसमें। जैसे हम देखते हैं लोग अब गूगल पे सर्च करके आते हैं कि मुझे क्या

0: आपने नाश्ता करके आपने वो ब्लड डोनेट करना।
1: तो सर अंत में क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से हमारे जो रक्तदाता हैं, रक्तदान करते हैं बहुत से रक्तदान कैंपों में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मेरा तो यही संदेश है सर, वो खून दान करें, किसी को लड़ाई झगड़े में खून ना बहाके संदेश दें भाईचारे का एकता का, रक्तदान करें।
1: तो रामेश्वर सैनी जी, पदाधिकारी सर्व समाज कल्याण संस्था कुरुक्षेत्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
0: ठीक है सर,
2: पहले चीज डॉक्टर के पास जाएं, अपने चिकित्सक के पास जाएं, उनको वो बताएं और जो वो चिकित्सक आपको सलाह देता है टेस्ट कराने की, दवाइयां लेने की, वही लें, अन्यथा अपने आप कोई मेडिकेशन ले लें जो आपके लिए काफी हानिकारक हो सकती।
1: तो डॉक्टर रमेश सब्बरवाल जी, कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं डिप्टी सिविल सर्जन लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल कुरुक्षेत्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
0: धन्यवाद।
3: और साथियों आपको ले चलते हैं भारत रत्न गुलजानंदा जी नीति एवं दर्शन शास्त्र केंद्र सदाचार स्थल ब्रह्म सरोवर पे। साथियों जहाँ पे दिनांक 4 जुलाई को भारत रत्न गुलजानंदा जी की 128वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। साथियों जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए श्री सुभाष सुधा, पूर्व राज्य मंत्री हरियाणा, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय श्री विश्राम कुमार मीणा, उपायुक्त कुरुक्षेत्र और सभी कुरुक्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। साथियों नंदा जी की 128 जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले हवन यज्ञ हुआ, उसके बाद पुष्पांजलि, पौधारोपण और पहली बार भारत रत्न गुलजानंदा जी की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। साथियों कार्यक्रम में बोलते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री हरियाणा श्री सुभाष सुधा ने कहा,
4: और आज जो प्रधानमंत्री रहे गुलजानंदा जी की आज जयंती है, जयंती के अवसर पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, दो बारी देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में बहुत काम किए, मजदूरों के लिए बहुत कार्य हुए और मैं कहूंगा 1968 में कुरुक्षेत्र में जो हाँ आज बैठे हैं, क्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना उन्हीं ने की। आज जो भी कुछ भी है क्षेत्र में, ये देखिए कितना बड़ा ब्रह्म सरोवर बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी का काम किया, ये सारा काम जो किया आदरणीय देश के पूर्व में प्रधानमंत्री गुलजानंदा जी ने किया और आज उनकी जयंती में बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शन आगे ये KDP बहुत ज्यादा अति कर रहा है। आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं कहूँगा यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया गया, बच्चों की एक एग्जीबिशन लगाई गई, यहाँ पर यज्ञ हुआ, उसके साथ साथ यहाँ पर भजन हुए। तो उनके इस ऐसे महान पुरुषों की जिन्होंने देश के लिए बहुत कार्य किया, मैं तो इतना कहूँगा उनके लिए ये कार्य करने चाहिए। सियालकोट में जिस प्रकार से वो पैदा हुए और वहाँ से आकर किस प्रकार से महाराष्ट्र में रहे और उन्होंने अपना जीवन दे दिया, हमेशा मजदूरों की बात को उन्होंने उठाया और आगे होकर आज क्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो आज ये तरक्की कर रहा है ये उन्हीं की देन है। तो मैं ऐसे पुरुषों को प्रणाम करता हूँ, आज उनकी जयंती के अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद।
3: साथ ही उसके बाद थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने अपने विचार रखे।
5: भारत रत्न स्वर्गीय श्री गुलजारीलाल नंदा जी की जयंती है, इस अवसर पर उनको शत शत नमन करते हैं। स्वर्गीय नंदा जी सही मायनों में सफेद कपड़ों में संत थे, जो राजनीति में आने के बाद जहां राजनीतिक जिम्मेवारियों को उन्होंने निभाया उसके साथ साथ जो उनका धर्म

0: के प्रति लगाव था वो भी एक बहुत ही अद्भुत था।
1: साथियों इसके अलावा शाम 5:30 पे भजन संध्या, शाम 6:30 पे महाआरती और पुरस्कार वितरण समारोह भी हुआ। लेकिन साथियों भारत रत्न गुजानंदा जी नीति एवं दर्शन शास्त्र केंद्र सदाचार स्थल में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया साथियों, जिसमें कुरुक्षेत्र की बहुत सी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। साथियों हम बातचीत कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की ऐसी सामाजिक संस्था से जो कुरुक्षेत्र में बहुत से रक्तदान शिविर लगाते हैं। साथियों आइए जानते हैं उनसे ही।
2: मेरा नाम ईश्वर सैनी, मैनेजर प्रिंटिंग पब्लिकेशन कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट।
3: सर आज भारत रत्न गुजानंदा जी की 128वीं जयंती हम मना रहे हैं और आज रक्तदान शिविर लगाया गया है पहली बार सदाचार स्थल ब्रह्मसरोवर पे और आपकी संस्था ने भी इसमें योगदान दे रही है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
2: जैसा कि आपको पता ही है संस्था समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप करती है। अंदीक जी एक अपनी एक ऐसी हस्ती जो भारत रत्न है हमारे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र को तीर्थ को संवारने में और कुरुक्षेत्र को संवारने में एक अहम योगदान दिया है, तो उन ऐसी हस्ती के यादगार में हमने एक जो ब्लड डोनेशन कैंप किया था वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की सहयोग था, उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने उसका आयोजन किया था और उसमें सर्व समाज कल्याण सेवा समिति ने अपना सहयोग किया, जिसमें हमने लोगों को मोटिवेट किया कि भैया आप रक्तदान करके किसी की जान बचाएं।
3: रमेश्वर जी आपसे चाह रहे हैं कितने रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में शामिल हुए?
2: इसमें लगभग 65 के आसपास इसमें रक्तदाता शामिल रहे। कुछ ऐसे लोग भी रहे जो काफी किसी को बुखार या काफी लोग ब्लड देने के लिए आए थे लेकिन कोई ना कोई किसी दवाई लेने की वजह से या किसी हीमोग्लोबिन कम हमें एक सहयोगी के रूप में बुलाया गया जिसमें कई संस्थाओं ने भाग लिया। उसमें एक संस्था हमारी भी थी जिसने अपनी बढ़ चढ़ कर इसमें रक्तदाताओं को मोटिवेशन करके उनको ब्लड डोनेट कराया।
3: जो सदाचार स्थल है से पहली बार ये रक्तदान शिविर लगाया गया, लेकिन आपसे जानना चाह रहे हैं आपकी जो संस्था है वो कहाँ कहाँ पे रक्तदान शिविर है पूरे हरियाणा के अंदर लगाते हैं वो हमें बताइए।
2: पूरे हरियाणा में अमरीक जी जैसे कि हिसार, नरवाना जी, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, इनमें हम रक्तदान कर चुके हैं, रक्तदान शिविर लगा चुके हैं। 550+ के करीबन हम इसमें अभी रक्तदान शिविर लगा चुके जिसमें काफी यूनिट रक्त एकत्रित हो चुका है और संस्था जो 2-3 बार सजावाड़ी भी है।
3: तो हमें ये बताइए सर जैसे आप बहुत जगह रक्तदान जो शिविर है वो लगाने जाते हैं तो किस तरह का जो रुझान है वो आम जन का रहता है रक्तदान शिविर को लेके?
2: नहीं अब लोगों में बहुत जागरूकता है जी, अब लोग बहुत रक्तदान करते हैं, जब भी हम तो मैसेज डालते हैं तो लोग उसके लिए और काफी संस्थाएं इसमें काम कर रही है। जैसे किसी को अचानक से ब्लड की जरूरत है पीजीआई में जरूरत है या कहीं तक पीजीआई में जरूरत है, चंडीगढ़ पीजीआई में जरूरत है या किसी अन्य हॉस्पिटल में जरूरत है तो लाइव भी प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे डोनर भेजते हैं अपने खर्चे।
3: तो आपसे सर ये चाह रहे हैं कि कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं और कोई ऐसा पल आपको नजर आया जबकि आपको बहुत अच्छा लगा जब आप रक्तदान शिविर में रक्तदान किया आपने?
2: सर इसमें 2013 से संस्था काम कर रही है ब्लड डोनेशन पे। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मुझे मेरे परिवार में जब जरूरत पड़ी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। मैंने जब पहले लस्सी दूध हो गया, लिक्विड ज्यादा लेना है, हैवी डाइट नहीं लेनी, उससे क्या है उल्टी लगने का खतरा रहता है, ज्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी।
3: दाताओं को देते हैं वो भी हमें थोड़ा सा बताइए।
2: सर हम लोगों को बताते हैं कि आपको 3 महीने पहले कोई 6 महीने के दौरान कोई आपको मलेरिया डेंगू ना हुआ हो, कोई आपका 1 साल के बीच में कोई ऑपरेशन ना हुआ हो, आपने कोई टैटू ना बनवाया हो, जो टैटू बनवाने वाला व्यक्ति है 1 साल तक वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, कोई आपने टैटू ना बनवाया हो या आपको कोई मेजर बीमारी ना हो, हार्ट की बीमारी ना हो, कोई HIV ना हो या कोई और जो कोई एलर्जी ना हो, कोई दवाई ना खाई हो, इस प्रकार की सारी इसको जानकारी देते हैं कि आपने सुबह उनको ये भी हिदायत दी जाती है कि आपने अच्छा खाना खाना है, सुबह अच्छा है नाश्ता लेके और आपने नाश्ता करके आपने वो ब्लड डोनेट करना।
3: तो सर अंत में क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से हमारे जो रक्तदाता हैं, रक्तदान करते हैं बहुत से रक्तदान कैंपों में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
2: मेरा तो यही संदेश है सर, वो खून दान करें, किसी को लड़ाई झगड़े में खून ना बहाके संदेश दें भाईचारे का एकता का रक्तदान करके।
3: तो रामेश्वर सैनी जी पदाधिकारी सर्व समाज कल्याण संस्था कुरुक्षेत्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
2: ठीक है सर, थैंक यू सर।
1: साथियों कार्यक्रम के अंत में भारत रत्न गुलजारनंदा नीति एवं दर्शन शास्त्र केंद्र की निदेशिका प्रोफेसर सुची स्मिता शर्मा ने सभी का धन्यवाद किया। और साथियों आज कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हम आपके लिए लेकर आए हैं किस तरह से हम अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं। साथियों आज तकनीकी का युग है और हर कोई जो मोबाइल है उसका इस्तेमाल कर रहा है। साथियों जब हम बड़ों की बात करें चाहे छोटों की बात करें हर कोई मोबाइल का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा है और अभी हम देख रहे हैं साथियों कि छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लगवाने पड़ रहे हैं। और साथियों हम मोबाइल का किस तरह से कम प्रयोग कर

0: सकते हैं और अगर मोबाइल का प्रयोग करें भी तो किस तरह से अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं, साथियों इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही हैं डॉक्टर गुंजन मेहता, नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोक नायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल कुरुक्षेत्र।
1: डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब आज आपसे जानना चाहेंगे कि आज हर कोई मोबाइल का हैबिचुअल हो चुका है, हमें बहुत ज्यादा आदत हो गई है मोबाइल का इस्तेमाल करने की, चाहे हम बड़ों की बात करें चाहे बच्चों की, तो जानना आपसे चाहेंगे आप आई स्पेशलिस्ट हैं, किस तरह के नुकसान हमें हो सकते हैं?
2: देखिए हाँ, ये तो आपकी बात बिल्कुल सच है कि आजकल हम सभी मोबाइल के आदि हो चुके हैं, जिंदगी जैसे मोबाइल बन गई है, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो वो भी खाना बिना मोबाइल देखे नहीं खाते हैं, बड़ों को भी पूरी लत है, थोड़ी देर में उन्हें फोन चाहिए। तो जो छोटे बच्चे हैं अगर अभी वो डेवलपिंग एज में हैं, आप उनको लगातार वो एक नज़दीक का काम करे जा रहे हैं, हमारी आंखें दोनों कामों के लिए बनी है, नज़दीक का काम भी दूर का काम भी। जब हम फोन देख रहे हैं तो हम कंटिन्यूस एक नज़दीक के वर्क पे हैं, उससे क्या है हमारी एकोमोडेशन इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है कि उसकी वजह से बच्चों को एकोमोडेशन इतना यूज़ करने की वजह से दृष्टि रोग के विकार आने लग जाते हैं, जैसे कि उन्हें मायोपिया हो सकता है, उनको स्क्विंट भी हो सकता है। तो इस चीज़ की हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जो बड़े लोग हैं वो भी कंटिन्यूस अगर फ़ोन देखे जा रहे हैं तो उनको सिर दर्द की दिक्कत होने लग जाती है, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों का सूखापन हो जाता है, जो कि आंखों का मतलब एक तरह से आंखों के ये सब प्रॉब्लम्स लोगों में आ रहे हैं। दूसरा साथ साथ सर्वाइकल भी आप कह रहे हैं, वो भी ठीक है, हाँ लगातार आंख झुका के नीचे रखने की वजह से उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं।
1: मैम आपसे चाहेंगे कि जैसे कितने अगर पूरे दिन की बात करें, कई बार तो हम 3 घंटे 4 घंटे 5-5 घंटे मोबाइल देखते हैं, तो आपसे चाहेंगे कि जैसे मोबाइल देखना तो है, कई बार जरूरत भी है, हमारे काम का पार्ट भी मोबाइल बन गया, तो कितनी देर हमें देखना चाहिए नॉर्मली बात करें, और अगर लगातार देखना हमारी मजबूरी है तो डिस्टेंस कितना हमारी आंखों से होना चाहिए, अगर बड़ों की हम बात करें खासकर?
2: देखिए थोड़ी दूरी तो आपको बनाए रखना चाहिए, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर दूर आपको अपना फोन रखना चाहिए। दूसरा हो सके तो थोड़ी आपकी आंखों के लेवल पे लाकर फोन देखिए ताकि आपकी मतलब गर्दन भी ना झुकी रहे। और दूसरा एक टाइम लिमिट तो आपको बांधनी पड़ेगी, 30 मिनट्स के बाद आपको एक ब्रेक लेने की बहुत जरूरत है। ये नहीं कि आप लगातार 4-4, 5-5 घंटे फोन पर ही है, क्योंकि देखिए बच्चे एक तो फोन देखते हैं, दूसरा आजकल स्कूल में जाएंगे उसके बाद उन्हें होमवर्क भी मिलेगा और उसके बाद फिर वो ब्रेक लेने के लिए भी फोन ही देख रहे हैं, तो कंटिन्यूस वो नियर वर्क में ही है, बाहर दूर का काम तो वो कर ही नहीं रहे हैं, इसी वजह से उन्हें ज्यादा दिक्कतें आ रही है। तो बच्चों को तो आप ज्यादा प्रोत्साहित करें कि फोन की बजाय अगर वो बाहर खेलें तो उससे अच्छी बात नहीं है, और अगर आपको फोन देखना ही पड़ रहा है तो 30-30 मिनट्स के बाद आप ब्रेक जरूर लीजिए, ये नहीं कि आप कंटिन्यूस 6-6 घंटे फोन पे ही रहे।
1: मैम कुछ सालों पहले हम देख रहे थे कि बच्चे फोन से बहुत दूर थे, थोड़ा बहुत देखते थे, लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया तो कई हर बच्चे की मजबूरी भी होगी, वो डिपेंड हो गया फोन के ऊपर, उसका उसका स्कूल का काम आ रहा है, लेकिन अब ज्यादा ही हैबिचुअल हो गया है हर बच्चा, जैसे मैंने कहा अगर खाना खा रहा तो खाना भी फोन देखते देखते खा रहा है, तो वो अगर बच्चा फोन देखता है तो उसको किस तरह के नुकसान होने की गुंजाइश है, किस तरह के नुकसान उसे हो सकते हैं?
2: वही जैसे मैंने आपको समझाया कि उसके कंटिन्यूस फोन देखने से आपको, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको चश्मे का नंबर आ रहा है, जो हम देख रहे हैं ओपीडीज में आजकल पेशेंट्स को एम्ब्लायोपिया की भी दिक्कत आ रही है, पेशेंट्स को स्क्विंट की भी दिक्कत आ रही है बच्चों में खासकर देखने को मिल रही है, और ज्यादा कारण यही है, उनको फोन देखने का ही मेन कारण है, क्योंकि बहुत देर आप नजदीक, बच्चे फोन में बहुत खो जाते हैं, पढ़ाई में इतना नहीं खोते हैं जितना वो फोन में खो जाते हैं, और वो फिर कंटिन्यूस देखने की वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही है, सिर दर्द रहना बच्चों का, यही आंखों में सूखापन फील होना, लाली होना, ये सब दिक्कतें आ रही हैं।
1: मैम बड़ों को तो हमने देखा कि आप समझाएं कि नहीं इतने घंटे बाद ये कीजिए, वो ये कर सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं वो जैसे गेम खेल रहे तो बड़ा डूब जाते हैं गेम में, तो उनको अगर देखें उनका कितने मिनट ब्रेक उनका होना चाहिए, या कितने एक पूरे दिन की हम बात करें तो कितने समय हम बच्चों को फोन देना चाहिए?
2: देखिए देना तो नहीं चाहिए, अगर आपने देना ही है तो एक उनका एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि 1 घंटे से ज्यादा आपको फोन नहीं मिलेगा और हर 15-20 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, बल्कि ऐसे दीजिए कि अभी थोड़ी देर के लिए 15 मिनट दिया, फिर 1-2 घंटे बाद दिया, और बाहर की एक्टिविटीज जरूर रखिए, अगर सारा दिन सिर्फ आप अंदर ही हैं पढ़ रहे हैं या फोन देख रहे हैं तो दिक्कत आनी बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज के।
1: मैम हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो स्कूली बच्चे हैं बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल खासकर कर रहे हैं, तो ऐसे स्कूली बच्चों के लिए, गरीब बच्चों की हम बात करें तो कुछ कार्यक्रम आपके द्वारा चलाए जाते हैं?
2: हाँ जी, स्कूली बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूली

0: मतलब चश्मा सबको मिले एक्चुअली, छोटे बच्चों चाहे वो गरीब हैं चाहे अमीर हैं, अमीर तो अपने अपने लेंगे, उनके लिए भी, ताकि ये प्रावधान रखा गया है।
1: अंत में आपसे चाहेंगे कि क्या संदेश आपके तरफ से रहेगा, चाहे हम बड़ों की बात करें चाहे बच्चों की, सभी पूरी तरह से स्वस्थ रहें, आंखें हमारी स्वस्थ रहें, तो किस तरह के कार्य करने की हमें जरूरत है?
0: देखिए मतलब जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि उन्हें सिर्फ मतलब नजदीक के कामों में मत लगाए रखिए, कि ये नहीं कि पढ़ के हटे और हम उन्हें कहें ड्रॉइंग कर लीजिए, अब बेटर है उन्हें थोड़े आउटडोर गेम्स दीजिए, आउटडोर गेम्स वो खेलेंगे तो उनकी आईसाइट ठीक रहेगा। और बड़ों के लिए भी मेरा यही संदेश है कि फोन में मत डूबे रहिए, कुछ और कर लीजिए। पहले हम कहते थे कि टीवी मत देखो, पर अब के समय में आप कहोगे तो टीवी इज मच बेटर देन फोन, क्योंकि टीवी फिर भी एक डिस्टेंस से देखा जाता है, फोन तो बहुत नजदीक हो जाता है, जिसकी वजह से कि ज्यादा नुकसान होता है। तो थोड़ा फोन से निकल के और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी हुई, ताकि आपको ये सब दिक्कतें ना सहनी पड़े।
1: तो डॉक्टर गुंजन जी, आई स्पेशलिस्ट LNJP कुरुक्षेत्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
0: थैंक यू।
1: साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आज के संक में सिर्फ इतना ही। साथियों, आज के संक में वाचन संकलन और संपादन रहा आपके दोस्त अमरीक सिंह का, प्रस्तुति सहायक दीपक और प्रस्तुतकर्ता विनय श्री। साथियों, इसके साथ ही अनुमति दीजिए अपने दोस्त अमरीक सिंह को, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रस्तुति अमरीक सिंह की थी।

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे वाले हैं। कुछ ही क्षण में हम चलेंगे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। ठीक 6:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय

0: बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मानसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministers of all states and union territories. He said the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days. The monsoon session of Parliament will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiji informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. The government has withdrawn emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act after disruptions to LNG shipments through the Strait of Hormuz. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, today met a delegation of Bharatiya Mazdoor Sangh, BMS, and affiliated employees' organizations to discuss a range of issues relating to government employees, pensioners and administrative reforms. Dr. Singh appreciated the constructive role played by employee organizations in bringing service-related issues before the government through institutional dialogue. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect 7 parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. In Raigarh district, 10 to 12 tourists were safely rescued by the police from Adoshi waterfall

समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी योजना के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पठानकोट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी का सपना पूरा किया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार जिले के गांव बाडूपट्टी में आईटीआई के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग देने का आह्वान किया। और हरियाणा ने जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए तैयारियां शुरू की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। पहली जुलाई से इस मिशन के सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3

0: वर्ष से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना 1 साल पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन 10% की वृद्धि की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने जो आवाज उठाई और जो सपना देखा, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर पूरा किया है। आज भारतीय तिरंगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक शान से लहरा रहा है। श्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर पठानकोट के विधायक अश्विनी शर्मा, पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश बब्बू, पूर्व विधायक सीमा कुमारी और दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत माता की उत्तरी सीमा है। ये बहादुर योद्धाओं, शहीदों, देशभक्तों और देश के महान सपूतों की धरती है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ की मिट्टी में वीरता की खुशबू और हवा में देशभक्ति की भावना है। उन्होंने कहा कि इतिहास कुछ खास शख्सियतों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उन पीढ़ियों से याद रखता है जो उनके आदर्शों को जीवन में अपनाती हैं। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार जिले के गांव बाडोपट्टी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 6 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस भवन के निर्माण पर 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ कौशल से संपन्न करना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके।
2: आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में आईटीआई का शिलान्यास हुआ है। शिक्षा के साथ साथ रोजगार बहुत जरूरी है। आईटीआई के अंदर जो बच्चे अपने अलग अलग फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, उनके लिए कौशल की शिक्षा के लिए ये सुविधा आपके गांव में दी जा रही है, जिसमें न केवल गाँव बाडोपट्टी बल्कि बदनपुर, साथ में भिंडाना, परसोर, देवरा है, इस साइड में राजली है, एरिए के जितने भी गाँव पड़ते हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। आज शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल शिक्षा बहुत जरूरी है और ताकि उसको रोजगार मिल सके। कोई भी बच्चा अगर आईटीआई करता है तो सरकारी जितना पैसा मिलता है, इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, बल्कि कई जगह उससे ज्यादा भी पैसा मिलता है।
0: कैबिनेट मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को भवन के निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध ढंग से करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने आज फरीदाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने तथा लोगों को जल संरक्षण के प्रति जन जागरण करने का आह्वान किया। वे फरीदाबाद में उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रही थी। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, खाद्य मंत्री राजेश नागर व अन्य नेता भी मौजूद रहे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भाजपा कार्यकर्ताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया।
3: कुछ भ्रष्ट पार्षद हो चाहे अधिकारी हो, उन्होंने बाहर से आए हुए घुसपैठियों की पहले आधार कार्ड बनवाए और कुछ बुकों पर उनकी वोट भी बन गई, तो उन लोगों को चिन्हित करना, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि वोट डालने का अधिकार उसी को है जो भारतीय है। तो ये हमारा विधायक कौन होगा, हमारा सांसद कौन होगा, इसका तय हम सब भारतीय करेंगे। ये बाहर से आए हुए कुछ बैठिए नहीं करेंगे तय कि हमारा

0: सांसद कौन बनेगा?
1: उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा वजीरपुर गांव के परशुराम चौक से अमृता अस्पताल तक साइकिल रैली आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं साइकिल चलाकर रैली में भाग लिया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। हरियाणा ने भारत की जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त और हरियाणा जनगणना 2027 की नोडल अधिकारी डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ़ में बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जनसंख्या गणना के पूर्व परीक्षण को अधिसूचित कर दिया है। ये क्षेत्रीय अभ्यास कल से 18 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन सैनी ने कहा कि सिख इतिहास में बाबा लखी शाह बंजारा का योगदान अमर है। जब अत्याचारी औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम कर दिया गया, तब भय और आतंक का वातावरण था। ऐसे समय में बाबा लखी शाह बंजारा जी ने अद्भुत साहस दिखाया। उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन सैनी आज लाडवा में गुरुद्वारा सिंह सभा में बाबा लखी शाह बंजारा के 448वें जन्म उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल से 8 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। ये इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई एचटेट परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुई। दो दिन तक चली इस परीक्षा में लेवल एक और लेवल दो की परीक्षा ली गई। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी योजना के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पठानकोट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉ. मुखर्जी का सपना पूरा किया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार जिले के गांव बाडोपट्टी में आईटीआई के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। गीता संदेश कार्यक्रम में आज सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 से 14 तक की व्याख्या। व्याख्याकार हैं श्री श्यामलाल चूड़ामणि।
3: गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 और उससे आगे की व्याख्या। पर्याण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोः मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। पर्याण काल में अचल मन वाला भक्ति युक्त पुरुष योग बल से प्राणों को भ्रुक्ति के बीच में अच्छी प्रकार स्थापित करके उस दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है, जो लगातार उस परमात्मा का स्मरण करता है, उसे याद करता है। वो भक्ति युक्त पुरुष, भक्ति करने वाला पुरुष प्रयाण काले मन जब परमात्मा में समा जाता है, तब योग बल से नियत कर्म के द्वारा, आराधना द्वारा भ्रुक्ति के बीच में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके, मतलब प्राण और अपान को सम करके, न कोई बाहर से विचार अंदर आए और न ही सांस छोड़ते समय बाहर कोई विचार जाए, मतलब और कुछ भी चिंतन न करते हुए, जब सत रज तम वाली स्थितियां भी शांत हो, अच्छाई बुराई भी ध्यान में न आए, जब सुरत या कह लो ध्यान केवल ईष्ट में ही हो, तब वो अचल मन, स्थिर हुआ चित्त उस दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अभी उन्होंने कहा लगातार मेरा ही स्मरण कर। कैसे करें? इसी योग धारणा में स्थिर रहते हुए करना है। योग धारणा वही कि लगातार उसका सिमरण, ऐसा करने वाला ही

दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है जो कभी भूलता नहीं, विस्मृत नहीं होता। यत अक्षरम वेद विदः वदन्ति विशन्ति यत यतः वीतरागः यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम् चरन्ति तत्ते पदम् संग्रहेण परवक्ष्य। वेदविद अर्थात अविदित तत्व जो अक्षर है, जिसे वीतरागी महात्मा पाने का प्रयास करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस हृदय में धारण करने योग्य पद को मैं तुझे बताऊंगा। वेदविद अर्थात अविदित तत्व को प्रत्यक्ष जानने वाले, अविदित जो जाना नहीं गया था, उसे आमने सामने या साक्षात जानने वाले लोग जिस परम पद को अक्षरम ना क्षय होने वाला या जिसका नाश नहीं होता, उसे वीतराग महात्मा पाने का प्रयास करते हैं। जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ इंद्रियों के प्रयोग से दूर रहना नहीं, बल्कि ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी, बाहर के किसी भी स्पर्श या छूने को मन से छोड़कर ब्रह्म का लगातार चिंतन सिमरण करना ही ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्म का दर्शन करा के उसी में स्थान दिला के शांत हो जाता है। इस प्रकार की कोशिश से केवल इंद्रिय संयम ही नहीं होता, बल्कि हर प्रकार का इंद्रिय संयम खुद ब खुद हो जाता है जो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। जो हृदय में धारण करने योग्य है, वो पद, वो बात मैं तुझे बताऊंगा। वो पद क्या है, कैसे पाया जाता है, इस बारे श्री कृष्ण बताते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थिता योग धारणाम। इंद्रियों के सभी दरवाजे बंद करके और मन को हृदय में रख के अंतःकरण की बातों को मस्तिष्क में रोककर तथा योग धारणा में स्थित होके, पुनः इंद्रियों के सभी दरवाजे बंद करके वासनाओं से दूर होके मन को हृदय में स्थित करके, ध्यान हृदय या मन में ही धरा जाता है, बाहर नहीं, पूजा बाहर नहीं होती। प्राण मतलब अंतःकरण की बातों को मस्तिष्क में रोककर और योग धारणा में स्थित होके, इस विधि के अनुसार योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सभी द्वार बंद करने होते हैं। इसमें नेत्र, कान, नाक, जीभ और स्पर्श पूर्ण रूप से वश में करके उन्हें इंद्रियों की तृप्ति से रोकना होता है। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसके साथ इष्ट के चिंतन में स्थिर होकर ध्यान समाधि लगाई जाती है। अर्जुन के पूछने पर भगवान उन्हें विस्तार से बताते कहते हैं, ओमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह पर्याति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। जो पुरुष ओमिति, ओम इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू इसका जाप और मेरा ध्यान धर। प्राप्ति के हर महापुरुष का वही नाम होता है जिसे वो प्राप्त है, जिसमें वो विलय है, इसलिए नाम ओम बताया और रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया, लेकिन कालांतर में भावुकों ने उनका नाम भी जपना शुरू कर दिया। वे श्रद्धानुसार फल भी पाते हैं, जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहाँ टिक जाती है, वहाँ मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ तथा मैं ही फल का विधायक हूँ, अर्थात फल का विधान करता हूँ। श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओम अहम स ओम, अर्थात वह सत्ता मेरे भीतर है, कहीं बाहर न ढूंढने लगे। यह ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। वास्तव में प्रभु के अनगिनत नाम है, किंतु जप के लिए वही सार्थक है जो छोटा हो, श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। इसके अलावा दूसरे देवी देवताओं की कल्पनाओं में उलझकर दृष्टि लक्ष्य से न हट जाए। पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लें। पुण्य पुरुषार्थ सफल होते ही कुतर्कों का शमन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्मा स्वरूप सदगुरु के स्वरूप का लगातार सिमरण से

0: मन का दमन और विलय हो जाएगा और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। सदगुरु कहते हैं, मेरा रूप देखें और श्रद्धानुसार कोई भी दो ढाई अक्षर का नाम ओम राम शिव में से कोई एक लें, उसका चिंतन करें और उसी के अर्थ स्वरूप ईष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान सदगुरु का ही किया जाता है। हम राम कृष्ण या किसी भी वीतरागी महात्मा का स्वरूप पकड़े, वे अनुभव में हमें मिलेंगे और हमारे समकालीन किसी सदगुरु की ओर बढ़ा देंगे, जिनके मार्गदर्शन से हम शनै शनै प्रकृति के क्षेत्र से पार होते जाएंगे। अनन्य चेतहा सततम यो माम स्मृति नित्यशाह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मेरे अतिरिक्त कोई चित्त में है ही नहीं। अन्य किसी का चिंतन ना करता हुआ जो लगातार मेरा चिंतन करता है, उस नित्य मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इस श्लोक में निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का उल्लेख है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। इसमें शुद्ध भक्ति योग का उल्लेख है। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग जाना चाहता है और न ही भवबंधन से मुक्ति। वो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। इन्हें निष्काम कहा गया है। इन्हें पूर्ण शांति प्राप्त होती है। हठ योगियों, ज्ञान योगियों और कर्म योगियों में भी अपना अपना स्वार्थ होता है, किंतु पूर्ण भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं रखता। भगवान भी ऐसे एकनिष्ठ भक्तों को सरलता से प्राप्य है। शुद्ध भक्तों के लिए अलग से कोई वृंदावन नहीं होता। वे जहाँ भी बैठते हैं वही वृंदावन हो जाता है। शुद्ध भक्त एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलता।
1: ये था हमारा आज का गीता संदेश कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 से 14 तक की व्याख्या। व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे श्री श्यामलाल चूड़ामणि। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 बजे आइए सुनते हैं थारे संदेश हमारे गीत कार्यक्रम।

财神的财神的是马来基，这个节目给所有听众的大家的ram ram。साथियों दिन एतवार कार्यक्रम में थाई संदेश मारे गीत और इस दिन हम लाएं आपकी पसंद के हरियाणवी फिल्मी गीत भजन रागनी। बस आप एक कलाकार मारे पर उन्हें चाहिए, आपका भजन रागनी मारे पर उन्हें चाहिए। मेरा प्रयास है कि हम आपकी जो पसंद है ना उन्हें अच्छी तरह पूरी कर सकें, क्योंकि जो ये कार्यक्रम है इसका नाम है थाई संदेश मारे गीत। इस कार्यक्रम का जो पहली पेशकश है इन सब साथियों फरमाइश में ये है, खुर्जा उत्तर प्रदेश से त्रिगराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा व उनके परिवार के सदस्य, फिल्म जोरू और जमीन का ये गीत।

0: शर्मा बस कैसा लग रहा, बालों में है बाल मुकंद, कानों में कन्हैया नाम, माथे पर मधुसूदन पत्ते सेलियो पे बस श्याम,
1: माथे पर मधुसूदन पत्ते सेलियो पे बस श्याम,
0: पलकों पर हा प्रिया में उनका आंखों में आनंद बस, कोई ओ मैं कलोल करते गालों पे गोविंद बस, नाक में

श्री कृष्ण नारी वास्करण से तन इस भजनताल कार्यक्रम को जो अग्नि पेश कर दोनों की मन पर मिली जुली फरमाइश इस तरह ही है। प्रोफेसर कुंडी कुरुक्षेत्रता लक्ष्मीकांत अनु विशाल काजल

इच्छा हुआ उनके परिवार के सदस्य और प्रोफेसर को भी कुरुक्षेत्र तही अंजु चंद्रशेखर आराधना व उनके परिवार के सदस्य चिट्ठी हमारे पास अपने संदेश हमारे पास आया है। ये है गांव ठोल कुरुक्षेत्र का राजीव विवेक रितेश गुरविंदर संदीप गुलाब और उनके बहुत से साथी और संदेश हमारे पास अगले आए हैं वो हैं कलिंगा मुहला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता निहारिका हार्दिक वंश बत्ता व पूरे परिवार के सदस्य। कार्यक्रम की जो अगली पेश का समय फिर हम जानने माफ करना किस्सा जानने चोर कलाकार है करमपाल। फिर माफी चाहूंगी किस्सा है पूर्णमल का और गायक कलाकार है करमपाल।

0: जल्लाद ने अपने तेगे मेहनत बाहर निकाले। किस्सा था पूमल का गायक कलाकार थे करणपाल। कई थाई संदेश मारे गए जायरा का थोड़े से विराम के बाद।
1: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
2: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश ले NIILM विश्वविद्यालय में,
8: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
7: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
8: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।
0: एक बार फिर कार्यक्रम थाई संदेश हमारे गीत में आपका स्वागत। मैं आपका अपना साथी गिरधारी और कार्यक्रम की यह अगली पेशकश।

किस्सा जा निचोर का गायक कलाकार थे करमपाल। और सुनना चाहता आप सब ने मुरादपुर करनाल से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश, भूवेश कंबोज उनके परिवार के सदस्य। संदेश हमारे पास है

और आखिर में ये कया भला कितनी खुशी मनाई सुदामा ज्ञानी की। ये समझदार थे, समझदार थे बहुत सुदामा।

किस अक्षण सुदामा गायक कलाकार थे राजकृष्ण अगवानपुरिया। कार्यक्रम की जो अगली पेशकश है इन सब साथियों की फरमाइश पे, और ये हैं दादरीगट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, कपिल, किरण, कुणाल मेहरा व उनके परिवार के सदस्य, फ्रांसी हिसार से राजकुमार डोंडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र डोंडी व उनके परिवार के सदस्य। और ये संदेश है हमारे पास गांव गोंदर करनाल से किमपाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी, भगत सिंह बुम्बक व उनके परिवार के सदस्य। और इसी गीत की जो हमारे पास फरमाइश एक और आई है वो है गांव जगोड़ी यमुनगर से, लिखने वाले हैं रणधीर सिंह बांगर, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, विदेन, मनकीरत, मनराज व उनके परिवार के सदस्य।

और इसी गीत का एक संदेश हमारे पास और है, ये है कतारसन डांडा, सुमन डांडा, खुशी डांडा, दीवन डांडा, मेज की थाना, जिला कैथल, हरियाणा से।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
4: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
3: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
4: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
5: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए और प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
6: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
5: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
6: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।
7: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
4: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
7: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
4: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
7: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र,
4: 8708903436।
8: एक बार फिर कार्यक्रम था संदेश हमारे गीत में आपका स्वागत, में आपका अपना साथी गिरधारी। और कार्यक्रम की जो अगली पेशकश है इन सब साथियों के फरमाइश में, ये है गांव नगलोई सिवानी मंडी हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक, वेदांश व उनके परिवार के सदस्य। ये चिट्ठी हमारे पास, संदेश हमारे पास है गाँव, भाई थोड़ा सा तो मैं ढूंढना पड़ेगा, ये है रामसावला जिला सहारनपुर से बिजपाल श्यामवीर, पूजा, मोनी, सोनम, उन्ती, उत्सव व उनके परिवार के सदस्य। और ये संदेश है गांव उगाड़ा जिला अंबाला से राजेंद्र कुमार, मुलकीत कौर, आरती, राघव, हरुण व उनके परिवार के सदस्य। संदेश है योगी मोहल्ला बराड़ा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, गुरसरत सिंह व उनके परिवार के सदस्य। और ये है बंसीलाल संधू व उनके परिवार के सदस्य गांव तेजामोड़ी अंबाला सिंह।

0: और कार्यक्रम में एक संदेश हमारे पास और है, यह है जोड़ माजरा इंद्रिय से राजकुमार अंशुल अवनी व उनके परिवार के सदस्य, और यह कार्यक्रम की अगली पेशकश।
1: यह रागनी जो है वो निहालदे किस्से की है, जब मरवन निहालदे को भेजने के लिए कहती है।

0: इसके अलावा आज का था संदेश हमारा गीत का समाप्त है, कहकर उनके सभी सुनाने के दारे की राम राम।
1: अभी आप सुने थे थारे संदेश मारे गीत कार्यक्रम FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच का लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड लंदन से आंखों देखा हाल।
2: ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
3: नमस्कार, फर्स्ट बॉल 20 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष जॉली और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम एक बार फिर से पहुंच रहे हैं इंग्लैंड के लंदन में और वहां लॉर्ड्स का मैदान इंतजार कर रहा है। एशेज की पुरानी राइवलरी कह लीजिए जो T20 क्रिकेट में आ गई है, या फिर दिग्गज टीमें जिनको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, एक होम टीम है इंग्लैंड और दूसरी ऑस्ट्रेलिया और आज विमेंस वर्ल्ड T20 का फाइनल है लॉर्ड्स में। मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद है।
4: Oh Manish, I must tell you the palpitation is really high because obviously there is little hit and miss. We are missing India at the moment, but right now we will only talk about Australia and England. Australia pure dominance, super aura, and today because it's Lords, a lot more to happen, but we have much more to talk about in the studio because we have our super experts. First of all, we have Chetan Sharma, former Indian fast bowler, and needless to say, 1986. Sevens World Cup hat-trick hero, the most loved Chetan. Welcome to the studio.
5: Thank you.
4: Also, we have Vaishali Mathur, India first-class cricketer. Vaishali, you also have a lot to talk, right?
6: Yeah.
4: बहुत सारी बातें आपसे स्टूडियो में करने वाले हैं। स्वागत है आपका। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बाय एनी मीन्स मोना पार्था साथी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेलकम अगेन। वी हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट गेम एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द निटी-ग्रिटीज एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट।
6: थैंक यू।
3: बहुत बहुत स्वागत है चेतन भाई, आप ही से शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप का एक और फाइनल लॉर्ड्स की बात करते हैं। 1983 वर्ल्ड कप होता नहीं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आज का मैच कैसे देखते हैं आप?
5: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो आप रिवलरी की आप मतलब जितनी बड़ी बात कर लें उससे कम होगा। इंडिया पाकिस्तान की आप बात करते हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंग्लैंड अपने घर में कोई वर्ल्ड कप का मैच अभी तक हारा नहीं है और ये एक ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर मैच अगर तीन मैचेस खेले गए लॉर्ड्स में, दो टीमों ने चेस करते हुए मैच जीता और एक टीम ने डिफेंड किया और वो टीम कौन सी है? इंग्लैंड। तो बहुत चीजें हैं जो इंग्लैंड के पक्ष में जाती हैं, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अनबीटन साइड्स हैं यहां हमारे सामने। जो अच्छी क्रिकेट आज खेलेगा ये ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा।
4: वैशाली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके बारे में बात करना वाकई जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात है, जैसे चेतन ने कहा, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, एक भी मैच अभी तक नहीं आ रही है। हमेशा हम बात करते हैं कि कौन सी टीम भारी रहने वाली है दूसरी टीम के ऊपर। ऑब्वियसली मुनीश उसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लगता है हमारी दोनों टीम्स जो है उनके कैप्टन पहुंच चुके हैं ग्राउंड में, देखते हैं टॉस में क्या हो रहा है।
7: Foes. I have match referee G.S. Lakshmi alongside our captains in Nat Siverbrunt and Sophie Molyneux from England and Australia respectively. Nat, you have the coin.
8: Heads.
9: Heads is the coin. It's heads.
8: We'll have a bowl.
7: Heads it is. Australia has won the coin toss. So what are Australia going to do?
8: We're going to have a bowl. Beautiful day out here and yeah, we want to get out here, have a run around and hopefully put some pressure on them early.
7: It's a very Australian way sometimes to set and put runs on the board. Did you have a big conversation about what to do first?
8: Yeah, there's been a lot of discussion around it, but at the end of the day, you sort of have to go with your gut. I don't think the pitch will change too much.
7: At the start of the tournament, it was a Phoebe Litchfield watch. It turned into an Elise Perry watch with the quad awareness. Is Perry playing any other changes to the side?
8: We've got no changes, so yeah, Pez pulled up really well from her training yesterday, and very excited to come out here.
7: I read the other day that your childhood dream was to come to this ground with your dad and watch a test match. You're now here. I know he's in the stand as well. And you're captaining Australia. That's good to beat that, doesn't it?
8: It sounds pretty wild, to be fair, but special day.
7: And 5-day gap. Did you sort of just allow the players a little bit of time off just to freshen up the mind a bit?
8: Yeah, the girls got a couple of days off. Went across town from south of London to north and started training over the last couple of days. So we're in a really good place.
7: We'll enjoy everything that is a final.
8: Thanks, Josie.
7: Matt, if it had fallen your way, would have things been different?
10: I was going to bowl as well, actually.
6: But yeah, I mean, it's a fresh wicket. Runs on the board in a final is no bad thing. So yeah, happy to be stood here batting first.
7: You've kept a pretty consistent team right throughout this tournament. Any changes from the semi-final win against South Africa?
6: No, we're unchanged.
7: Yeah, stick with that as well. Talk to me about your squad. I'm not talking so much players, but just experience. Charlotte Edwards, captain a team on this ground in 09. Heather Knight did it in 2017. If you sort of lent on them for experience, are you sort of thinking to yourself, I'm doing it my way?
6: I mean, it would be silly of me not to lean on that experience and then try and add my own little spin on it. But yeah, I think the whole group throughout this tournament has obviously experienced different grounds, different conditions, different pressures, and we've produced some really good cricket along the way. So yeah, hopefully we can do the same again today.
7: What wins it for England today?
6: One more run than the opposition, I suppose.
7: As simple as that. All the best. Go well, Matt. Australia have won the coin toss today and they're going to bowl first in the final.
3: आकाशवाणी में अब एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता पहले बोलिंग करने का फैसला किया. गर्मी बढ़ रही है लंदन में. विंबलडन हो चाहे लॉर्ड्स हो, पंखे निकल कर आ गए. उसी गर्मी को हम यहां पे कायम रखते हैं. वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे, टॉस जीता आपने, सुना दोनों कप्तानों ने कहा कि हम टॉस जीते चेज ही करते, आपके विचार?
10: इस पिच पे अगर देखें ना तो ये 75% ऑफ बैटिंग पिच है एंड 25% बॉलिंग पिच है. अगर और से अगर बॉल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में मीडियम पेसर को काफी स्विंग में फायदा देगी, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी वो स्पिनर्स पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो मुझे ये लगता है कि इस पिच पे 180 प्लस का स्कोर जरूर देखेगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने. एंड उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बॉलिंग के ऊपर. एंड दे नो कि जिस तरह से बॉल, हम कहते हैं कि बॉल रिएक्ट करती है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे वो कम उसकी स्विंग एंड वो सब कम होता जाता है तो वो स्पिनर पे ज्यादा फोकस करती है. तो आई थिंक इस यही एक बेनिफिट की वजह से उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है.
3: ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन अपने कॉलर्स को बता दें कि अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले हमारे दिग्गज खिलाड़ी चेतन शर्मा मौजूद हैं, मोना पार्थसारथी मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद हैं जो टेलीफोन नंबर्स में जल्दी से बता देता हूं. हमारे नंबर है 2342-1084, 2342-1085. दिल्ली का कोड है 011, उसे लगाना बिल्कुल ना भूलें. 2342-1084, 2342-1085. गीतांजलि
4: जी, मनीष बहुत सारी बातें इनफैक्ट हमारे कॉलर्स हमसे करना चाहते हैं. जैसा नंबर आपको बताया उन नंबर्स पे आप जरूर कॉल करें. मुना, बहुत सारे फैक्टर्स इनिशियली मैं कह रही थी चर्चा जरूर करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले पिच की बात करें. लाइक वैशाली कह रही थी कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है उन लोगों को जो स्टार्ट पहले कर रहे हैं बैट करने से, राइट. लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट व्हाट पिच इज गोइंग टू डू, इट वाज ऑलवेज लाइक बिकॉज इंग्लैंड का होम ग्राउंड है और इंग्लैंड ने अभी तक यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारा है. उनको ये एज मिलेगा? मिलेगा.
11: इंग्लैंड को न सिर्फ मैदान का एज मिलेगा बल्कि आप कहीं भी देखिए जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान इतना बड़ा है और उसमें पूरा होम सपोर्ट इंग्लैंड को मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. और उसके अलावा पिच की जो आप बात कर रहे थे तो 158 एवरेज स्कोर रहा है इस पिच पर और हमेशा चेस करने वाली टीम जैसे चेतन सर बोल रहे थे यहाँ जीतती है और उनको फायदा मिला. इसीलिए दोनों कैप्टन्स ने भी ये कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी शायद चेस करना पसंद करते. और काफी ही रोचक मुकाबला रहने वाला है क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की अगर हम अभी तक का जो उनका सफर रहा है उसकी बात करें तो एकदम बराबर नजर आती हैं. इंग्लैंड पिछले 2 साल में 18 महीने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म टीम नजर आ रही है, तो काफी एक मुझे लगता है रोचक मुकाबला रहने वाला
4: है. अभी रोचक बात यह है, कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और उम्मीद करते हैं पहले कॉलर एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से. नमस्कार जी, नाम बताइए अपना. जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी टोटल की चर्चा जरूर करेंगे, सोफिया के सिलेक्शन से खुश नहीं है. सो चेतन, वी विल हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो चेंज मेड बाय एनी टीम, सो व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट द टीम?
5: देखिए दोनों अनबीटन साइड्स हैं और जब आप जीतते आते हैं तो हर समय ये कहा जाता है कि ज्यादा बदलाव ना करेंगे तो अच्छी बात है आपकी टीम के लिए. और टॉस के समय अगर आप दोनों कैप्टन्स का रिएक्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहती थी. उनके सोच में ये है कि आप फील्डिंग करें, बट मैं हर समय ये कहता हूँ कि इतने बड़े मंच पे आकर जब आप रहते हैं ना, रन ऑन बोर्ड हर समय आपकी मदद करता है इस प्लेटफॉर्म पे आकर। और इंग्लैंड की कैप्टन की भी यही सोच थी कि ठीक है हम टॉस हार गए लेकिन रन ऑन बोर्ड हो सकता है कि ये प्रेशर में डाल दे, क्योंकि ये प्रेशर गेम रहेगा। आपके सपोर्ट जो कहते हैं ना, सपोर्ट इंग्लैंड को रहेगी, क्राउड आपके अगेंस्ट रहेगा, आप चेस कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं इस समय, तो चीजें अच्छी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए इफ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माही और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेट गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गयी। शहर में पेट गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

0: शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: विद प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर जीवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
5: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
6: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों ना हम साइकिलिंग करके अपने

भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: তার সাথ সাথ।
1: 15 overs have been completed. Time for England to now go on the charge. One feels the charge of the light brigade will be required. 105 for 4. This partnership worth 35 important runs, but England will be targeting at least 50 runs from these last 5 overs, and that means they'll have to get a move on. Molyneux, 2 overs so far, comes in and bowls, and the first one's punched away through extra cover, wide-ish mid-off region, and nicely timed indeed by Siva Brunt to get to 41 now, and England move to 109 for 4. Good start to the over. It's always a good thing for a batter if you can get some runs off the first ball.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: Molyneux in again, bowls, and this one shot and has been pulled away on the onside. Will this be cut off? Yes, it is. Georgia Wareham is there. Just a single at the deep mid-wicket region. And one more to the total. Freya Kemp on 22 of 13. She's been the one batter who has seemed to have timed the ball well. She's played two or three very delightful shots. One was the flick of the hip. The other one was the whip through the mid-wicket region. Certainly timing it superbly. Here's Molyneux, bowls now to the left hand. Kemp was off the back foot, not able to beat the fielder at short extra. No run. 110 for 4 it remains in the 16th over now. Run rate just creeping over 7 runs and over. Kemp high back lift, waits now, bat raised, looking for a forcing shot, gets a thick outside edge. The ball's running down towards the third man boundary. Will it be cut off? Yes, it is. As you'd expect. The Australians don't let too much go past them. 2 more runs for the total. Nevertheless, 112 for 4 with 2 balls in the 16th to come. Molyneux, left arm spin going really wide of the crease, and as a result that outside edge just flying away very fine, but no pace on the ball to really work with for Kemp. And that's something that Vineet's been consistently telling you. Here's Molyneux, last ball of the over, no, 5th ball of the over, worked away nicely wide of mid-on for a single by Kemp, and this partnership now is worth 43 with that single. 113 for 4. Last ball of the 16th coming up, and the field changes for the right-handed Siva Brunt. The right-left combination working to England's advantage, but Australia won't be too fussed. Balls to Siva Brunt, who works it away on the onside, playing it with soft hands. They look for the second run. Will they get it? No, there's no chance. A single is all they'll get. Over bowled, 16 gone. 114 for 4.
3: कहाना की कोशिश की है इंग्लैंड के बैटर्स ने कि विकेट के पीछे, और इसीलिए कई बार वो मुसीबत में भी पड़ी और विकेट भी खोया है उन्होंने, क्योंकि वो सुर बाउंड्री शॉट हैं विकेट के पीछे, लगभग 55-58 मीटर की बाउंड्रीज हैं, इसको टारगेट करने की कोशिश की है। लेकिन अब उस जगह ये मैच पहुंच गया है, ये पारी पहुंच गई है। यहाँ एक तो दोनों फिनिशर जो अब तक रही हैं इंग्लैंड की, एक तो फ्रेया कैंप उनमें से हैं जो कि मैदान पर पहले से ही मौजूद हैं, और उसके बाद डेनी गिब्सन आएंगी, वो भी आक्रामक शैली से खेल सकती हैं। अगर ये दो खिलाड़ी यहाँ से कुछ आक्रामक स्ट्रोक खेल पाती हैं तो ऑस्ट्रेलिया का भरोसा भरेगा कि इस पिच में स्ट्रोक्स लिए जा सकते हैं। तो एक सारा नजरिया है, समय के साथ पल पल रंग बदलता टी20 का खेल है, और 114 चार विकेट पर 16 ओवर के बाद इस फाइनल मुकाबले में लॉर्ड्स क्रिकेट के मुख्यालय में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबला यहां चल रहा है। और अब ये देखना, 6 बॉलर्स का इस्तेमाल पहले ही कर चुकी हैं, और देखना है कि अब किसके हाथ में वो गेंद देती हैं। गार्थ, किम गार्थ को 3 स्पेलों में इस्तेमाल किया है, एक एक ओवर के बाद भी बॉलर्स को बदला है। लेग स्टंप के बाद पे छिटकती हुई गेंद, क्या वाइड का इशारा आएगा अंपायर का? जी हाँ, वाइड गेंद मिली, 1 रन मिला। इंग्लैंड को चाहिए रन और ज्यादा से ज्यादा रन, और ऐसे में ये एक्स्ट्रास काम आएंगे, गेंद भी और मिलेगी और उसको वो खेल पाएंगे। लेंथ अगर आप देखें तो सेमीफाइनल 1-2s में अगर आप देखें तो लेंथ बहुत अलग थी, क्योंकि पिच बिल्कुल अलग थी, उसमें बाउंस ज्यादा था। इस बीच ये गेंद अंतिम समय में अपने आप को चेक किया, और ये गेंद जिसको कि थोड़ा सा फ्लाइट कर दिया था, देखा गेंद डिप हो रही है, अपने स्ट्रोक को बदला और धीरे से मोड़ भर दिया, उस पर कोई आक्रामक स्ट्रोक नहीं लिया। तो इरादे तो अब मनसूबे तो बन गए हैं कि आक्रामक खेलना है। चौथा ओवर है, अंतिम ओवर है गार्थ का, 10 डॉट बॉल्स हैं उनकी, 14 रन दिए हैं, एक खिलाड़ी को आउट किया है। हैमिल्टन का एक ओवर है, मॉलिन्यू और सदरलैंड का भी एक एक ओवर बचा है और वेरम और गार्डनर के दो दो ओवर शेष रह जाते हैं। यहां से ये 17वां ओवर है, अभी केवल एक गेंद हुई है, बहुत समय ले रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट में मॉलिन्यू ले रही हैं

0: और समय पे ये ओवर समाप्त नहीं कर पाएंगी। अगर ओवर रेट में पीछे पिछड़ेंगी तो बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी कम मिलेंगे, लेकिन सुखद स्थिति में है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पिच का कुछ पता नहीं है। एक एक रन रोकना भी चाहेंगे, ये भी एक नजरिया हो सकता है। फील्ड प्लेसमेंट में तो आप देखेंगे तो दायरे के अंदर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, 3 ऑन साइड में, 2 ऑफ साइड में, और ये लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रही हैं, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद आ रही है। बैट मुनी को आपके देखें, बड़ी सुरक्षित कीपर हैं और बहुत बढ़िया कैच आज पकड़ा और फिर अपील भी की और फिर रेफरल भी दिलवाया और उनको विकेट मिला था ऑस्ट्रेलिया को। तब गति पे अगर आप देखें तो सीमर्स बहुत कम रफ्तार की गेंदे करते रहे हैं, 88, 87, 103 फास्टर वन, 99, 92। तो जो प्रकाश और मैं आपको बार बार बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भी रणनीति धीमी गेंदे करने की, गति का परिवर्तन करने की रही है। अगली गेंद को सीधा खेला है और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, कोई 10-5 गज अंदर गेंद को फील्ड किया जाए, उससे पहले एक रन और। सदरलैंड एनेबल सदरलैंड वहाँ फील्ड कर रही थी, सोफी मलिंगा कप्तान है, एलिसा हिली के बाद ये कप्तान हुई। एलिसा पहले से पहले मैग लेनिंग थी, लंबे समय तक मैग लेनिंग रही, क्या खिलाड़ी थी, फिर संन्यास उन्होंने लिया। हालांकि लीग क्रिकेट और जो चैंपियन ट्रॉफीज चलती हैं हर देश में, उसमें वो अच्छा खेलती हैं। इस बीच अगली गेंद पर क्या स्ट्रोक, उल्टा घुमाकर खेलने की प्रक्रिया प्रतीक्षा की रैंप कर दिया, सीमा रेखा के बाहर 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: गेंद हालांकि हवा में थी ऊपर, लेकिन सोच समझ के उसको, जैसे स्कूप होता है, लेकिन जिस तरह से गेंद फिसली वो रैंप हो गया और फिर वो वहां पर गई। 51 रन की साझेदारी केवल 37 गेंदों पर, तो अब गियर बदला जा रहा है। अगली गेंद और इसको मोड़ा, स्क्वायर लेग अंपायर के पास से फील्ड की जाएगी। अचानक जो खेल हो रहा है अब आप नजरें नहीं हटा सकते, बैटर्स जो हैं रन जोड़ने में लगे हैं और वो गतिवति और पिच विच का कोई असर नहीं है, वो स्लो स्ट्रोक खेलेंगे क्योंकि वैसे भी पर्याप्त रन बनते नजर नहीं आ रहे हैं। एक आध विकेट और गिर जाएगा तो कोई बात नहीं है, और एक फिनिशर जो कि रोल दिया ही गया है टूर्नामेंट में कि आपको तेजी से रन बनाने हैं। ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉले चूकी विकेट कीपर के ग्लव्स में, 17वां ओवर पूरा हो।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी करनी।
2: जानिए आभा के बारे में।

0: चार सात सात
1: 18th over about to commence. 122 for 4 is the total. And Kingarth's bowled out. 4 overs, 1 for 20. Ash Gardner round the wicket. Bowls, and this one's pulled away. Backward a square on the onside for a single. One more to the total. And that'll bring up Siva Brunt's 50. Back-to-back 50s for the captain. And our statistician Om Prakash Sharma right on the money. 9th 50 in the World Cup, first versus Australia, and 20th in T20 internationals for the England captain. So holding the innings together, Nat Siva Brunt, 123 for 4, and Kemp on 26 on strike now. Looking to play a forcing shot again. No pace to play with at all. And the inside edge results in a squeaky single, 124 for 4. In the middle of the match, once the innings is over, there will be a program from the studios. I'll tell you who you can listen to. This one's bowled, and once again looking to play the big shot on the onside. Could have been a run out chance, shy at the striker's end. The ball runs behind the wicket, and the run is complete and the batter is safe. Rhea Kemp there diving to save her wicket, and just as well, because England would not want to have lost another wicket. Beth Mooney's throw going over the stumps. 124 for 4 now. Siva Brunt on 50, and this one's been pulled away wide of mid-on. She'll get 4 runs. Beating Ellis Perry, who was running around to her left. So welcome boundary for England. 129 for 4 now, and Kemp moves to 31. Short and wide, pulled away very nicely by Kemp, sitting on her back foot, and really timed it well. She has, as I said before, been the one England batter who seemed to have got the measure of the pace of the pitch. She struck some good blows with good timing. Gardner in again, bowls, makes some room, goes inside out on the offside, will get runs, but only a single down towards the wideish long off boundary. She was looking for a squarer space, didn't get it. 130 for 4 now, with the last ball of the 18th coming up. 130 for 4, 7.3, just a shade below that is the current run rate. Siva Brunt looking to be aggressive now. Bowls, and she goes back in deep in a crease and pulls it away, but only towards deep mid wicket for a single. 18 overs bowled, 131 for 4.
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: तो ये दिलचस्प है कि जब पिच में उतनी रफ्तार ना हो और गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है, तो आपकी बैट स्पीड बहुत मायने रखती है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। वो काम कैंप ने बढ़िया किया है और इसीलिए वो अब ज़्यादा तेज़ी से खेल पा रही हैं। स्ट्रोक्स अब इस पिच को देखकर उस हिसाब से अपने आप को ढाल चुकी है। सदरलैंड नए ओवर की शुरुआत करते हुए धीमी गेंद और उसमें पूरी ताकत के साथ कलाइयों को घुमाकर मोड़ दिया उसको ऑन साइड में और एक रन ले लिया। Siva Brunt 52 रन बनाकर खेल रही है। नौवा अर्धशतक पूरा हुआ, 132 चार विकेट पर। ये 19वां ओवर चल रहा है, इसके बाद एक ओवर रह जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा रन इंग्लैंड जोड़ना चाहेगा और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से रोकेगा, क्योंकि Siva Brunt काफी देर से खेल रही है, क्योंकि बैटिंग काफी ज्यादा शेष रह गई है। अब हर गेंद पर भरपूर प्रहार करने का प्रयास इंग्लैंड का रहेगा। 7.27 का रन बनाने का औसत है। सदरलैंड लगातार धीमी गेंदें कर रही हैं, 114 के आसपास की इस गेंद पर केवल एक सिंगल। सो सिंगल से ऑस्ट्रेलिया को अब कोई परेशानी नहीं होगी इस समय खेल के, तो बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। सर हिला रहे हैं बैटर, जिस तरह से कैंप हिला रही है उसको देख के लगता है कि निराश है। करें तो करें क्या इस पिच पर? फील्ड देखने को मिली तो आप थर्ड मैन दायरे के अंदर है, पॉइंट भी दायरे के अंदर है, कवर्स है शॉट वो भी दायरे के अंदर नजर आ रहा है। हवा में झूमती हुई तैरती हुई गेंद को घुमाया लगभग फुल टॉस पे और दूसरे रन के लिए इस बार जा रही है। दिशाहीन थ्रो, हाफ पिच पर आया, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाती। ये होता है दबाव बनाने का नतीजा, आसानी के साथ दूसरा रन पूरा हुआ। तीन गेंदें चार रन अब तक बन चुके हैं 135 चार विकेट पर। ये 19वें ओवर की तीन गेंदें अब तक हुई हैं। शिवम रन 54 गेंदों पर 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर कैंप खेल रही है, लेकिन स्ट्राइक के समय शिवर के पास है। फुल टॉस में घुमाया एक बार फिर, उस बार तो गेंद थोड़ी गैप में जाती हुई भी दिख रही थी, इस बार सीधे फील्डर के पास। एक रन और, हर गेंद पर रन तो बन रहा है लेकिन बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है इंग्लैंड को। पांच चौके लगाए हैं ब्रंट ने अपने 55 रनों में 50 गेंदों पर। विकेट के चारों ओर खेली अवश्य हैं लेकिन इससे ज्यादा तेज खेलने की क्षमता रखती हैं। इम्प्रोवाइज भी किया है, उल्टे शॉट्स भी खेले हैं, रैंप और स्कूप भी खेले हैं। लगातार दूसरे मैच में उनका शतक, फिर धीमी गेंद हवा में झूलती हुई मोड़ा, बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही हैं। कोई अवसर नहीं दे रही हैं कि बड़ा स्ट्रोक लगे, क्योंकि रफ्तार कम हो और वो भी इस पिच पर तो स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। व्हाइट हॉज सबसे अधिक रन इस टूर्नामेंट में 302, साउथ अफ्रीका की ओपनर टेस्मिन ब्रिट्स 225, सेवर ब्रेंट तीसरे नंबर पर आ गई हैं 224। सदरलैंड की अंतिम गेंद और लगातार ब्रॉक होल में टिप्पा खिलाती हुई स्विंग होती हुई धीमी यॉर्कर 110 के की, उसको रक्षात्मक रूप से खेला। 19वां ओवर समाप्त हो गया 137 चार विकेट पर।
1: राइट देन वी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंग्लैंड इनिंग्स एंड आफ्टर दिस इनिंग्स बिफोर ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट फ्री हिट 20 इज द प्रोग्राम यू विल बी एबल टू लिसन वेयर आवर एक्सपर्ट्स चेतन शर्मा एंड वैशाली माथुर बोथ फॉर्मर क्रिकेटर्स and Muna Parth Sarthy, sports journalist, will be in conversation with Munish Jolly and Gitanjali Soni. So do tune in for that at the end of the

0: चार सात सात स्वागत है आप सभी का फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं के पास 151 रनों का टारगेट है। मेरा नाम है मनीष जॉली, मेरे साथ हैं गीतांजलि सोनी और बहुत छोटे से ब्रेक में हमारे साथ बहुत बड़े दिग्गज पैनलिस्ट यहां जुड़ रहे हैं, चेतन शर्मा जी फॉर्मर इंटरनेशनल, मोना पार्थसारथी और साथ ही साथ गीतांजलि सोनी की बाईं तरफ बैठी। मैं चाहता हूं कि आप उनको इंट्रोड्यूस कराएं। गीतांजलि
1: जी बिल्कुल, वैशाली माथुर है हमारे साथ और जैसे हमारे श्रोता जानते हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला चल रहा है अभी और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी होते हैं ना, जैसे कुछ लोगों के सपोर्टर्स होते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंग्लैंड टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो मैच हुआ है, मैं सबसे पहले चेतन जी से पूछना चाहती हूं। चेतन, फर्स्ट ऑफ ऑल, योर प्रेडिक्शन वाज बैंग ऑन द वे यू सेड। आपने कितना स्कोर बताया था बताइए।
2: देखिए, मैंने कहा था कि मैंने जो पूरा वर्ल्ड कप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की बोलिंग इकोनॉमी रेट है, दैट इज 6.2, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा था 140-150 के बीच में, बिकॉज फाइनल्स है, फाइनल्स में ऑब्वियसली इंग्लैंड विल ट्राई द बेस्ट टू रीच 180। अगर आप 180 सोच के जा रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी हुई तो 140-150, बट स्टिल आई थिंक गीतांजलि दे आर 30 रन्स लेस, डेफिनेटली इफ यू बैटिंग फर्स्ट इट शुड बी 180, बट इंग्लैंड के स्पिनर्स में अच्छा दमखम है, लेट्स सी हाउ दे कम बैक एंड विन ए गेम फॉर देयर कंट्री, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऑस्ट्रेलिया यू नो दे हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप, तो 30 रन मुझे अभी भी लगता है कम है इंग्लैंड के।
1: सो क्लियरली इंग्लैंड इज देयर एंड गिविंग अ गुड फाइट एंड वी जस्ट हैव टू सी हाउ ऑस्ट्रेलिया फेयर्स नाउ।
2: डेफिनेटली यस, एंड देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ, मैंने उस समय मैच से पहले वाले शो में ये बात की थी, आप एंड ऑफ द डे The bowlers win you the games.
1: Yes.
2: Batters never win you the games. So let's hope कि England के spinners में जो दमखम है वो आ जाए, अपना दमखम दिखाएं और Australia को मात दे, क्योंकि तीन बार finals में Australia ने England को मात दी है, 2012, 2014, 2018. तो let's hope 2026 अलग हो England के लिए।
0: वैशाली, 150 का स्कोर England ने बनाया, आप ज़्यादा चाह रही होंगी, but क्या ये fighting score है?
3: अभी इंग्लैंड की बारी बाकी है एंड वहाँ उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स भी हैं एंड देखना ये है कि उनके स्पिनर्स क्या कमाल करके दिखाते हैं, वो बहुत जरूरी है। एंड 150 स्कोर अगर उनके जिस तरह से उनके पेपर्स पे आंकड़े हैं उनके स्पिनर्स के, तो उस हिसाब से 150 भी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए वो। एंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लॉर्ड्स की पिच पे स्पिनर्स का बुक, स्पिनर्स के हाथ में जो बॉल है और वो जिस तरीके से टर्न कराएंगे आज, वो कितना मुश्किल होगा बेथ मून के लिए खेलना और हमारी पैरी के लिए खेलना, एलिसी पैरी, तो ये दोनों एक बॉल बैटर हैं कि उन पे ज्यादा इंग्लैंड की आंखें होंगी, नजरें होंगी कि उनको बाहर का रास्ता वो कैसे दिखाए।
0: मोना, एक समय था जब लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम 150 भी ना टच करे, 130 के आसपास, वो एक क्षण आ गया था वहां पे, लेकिन आपको लगता है एक अच्छी रिकवरी की, क्योंकि पापले उतना तो इफेक्टिव नहीं रहा इंग्लैंड के लिए, बट इट वॉज गुड रिकवरी, आखिरी के 10 ओवर में लगभग 90 टच किया उन्होंने।
4: देखिए बिल्कुल, आप जब दो विकेट आपके पांचवें ओवर में गिर गए, पावर प्ले में आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा, उसके बाद जो आपकी कैप्टन है नेट सीवर ब्रेंट, वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा यार, उसके बाद मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि जो सोफी मोलिनू है, जब जॉर्जिया वेरहम इतनी अच्छी गेंदबाजी करी थी, दो ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे, और आपको ये भी पता होगा कि लेग स्पिनर है और नेट को उनके खिलाफ प्रॉब्लम आती है, पिछले 5 T20 इनिंग्स में 3 बार उनको वेरहम ने आउट किया है, उसके बाद उनका कोटा पूरा क्यों नहीं कराया गया, जबकि अनाबेल महंगी साबित हो रही थी, कुछ सोफी बाद में महंगी साबित हुई, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉलिंग में अगर चतुराई से किया होता तो 130, जैसे कि आप कह रहे हैं 130 के आसपास ही इंग्लैंड का स्कोर रहता, लेकिन आखिर में कुछ फ्रेया कैंप ने अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जो ऊपर के क्रम के बल्लेबाजों को करनी चाहिए थी।
1: चेतन, बहुत ज्यादा कुछ कंसर्निंग तो लग ही नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से, बहुत सारा ऑलराउंडर्स हैं इनकी टीम में, बैटिंग कोई कंसर्न नहीं है, कुछ ऐसा आपको लगता है कि कंसर्निंग हो सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए?
2: देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ये टोटल जो 150 का नजर आ रहा है, इट वुड हैव बीन 180, मतलब फील्डिंग की आप तारीफ करनी होगी, ऑस्ट्रेलियंस ने जिस तरह की फील्डिंग की, कैचेस पकड़े, अब इंग्लैंड को भी बहुत जरूरी है कि 150, मतलब आपको वो रन्स जो 15-20 रन्स कैसे फील्ड में रोकने हैं, मेक द लाइफ मिजरेबल फॉर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, वो तभी हो सकता है अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे, मतलब उनको 150 बनाने के लिए 170 की बैटिंग करनी होगी तब वो 150 बनाने के नजदीक पहुंचेंगे। इफ योर फील्डर्स बेसिकली मैं हंस में कहता हूँ फील्डर्स अगर अपने गेंदबाजों की मदद कर रहे हैं तभी आप मैचेस जीतेंगे। तो इस समय इंग्लैंड के पास गेंदबाज एंड द फील्डर्स, वो जो ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया अपनी फील्डिंग में कमाल की फील्डिंग है। एक कैचेस आप देख लीजिए जैसे कैचेस पकड़े उन्होंने और जैसी फील्डिंग की है, कम से कम 20-25 रन रोके हैं, तो अदरवाइज दिस टोटल वुड हैव बीन 170 ऑड।
1: एंड पिच इज गोइंग टू बिहेव एनी डिफरेंट?
2: आई डोंट थिंक सो। इट्स अ नाइस बैटिंग विकेट, इट्स अप टू द बॉलर्स, इट्स लिटिल स्लो। आपने देखा होगा कुछ गेंदे बिल्कुल नीचे रह गई है, बिल्कुल लो रह गई है, तो जब गेंद नीचे रहती है इसका मतलब इट विल डेफिनेटली हेल्प द स्पिनर्स। आप थोड़ा धीमा डालिए, गेंद तेज मत डालिए, बल्लेबाज को आने दीजिए गेंद के पास, ना कि आप गेंद को पहुंचाएं बल्लेबाज के पास। ये थोड़ी सी स्ट्रेटजीज हैं व्हिच आई थिंक सो द बॉलिंग कोच विल बी टॉकिंग टू द गर्ल्स एंड आई होप। मैं अच्छा मैच देखना चाहता हूं। देखिए एज ए इंडियन मेरा इंटरेस्ट तो अच्छी क्रिकेट के ऊपर है, हमारी टीम बाहर है तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट ये है कि अच्छी क्रिकेट और फाइनल एक फाइनल की तरह लगे, दैट्स इंपॉर्टेंट।
0: राइट देन, टीम भले ही बाहर हो लेकिन अंपायर वृंदा राठी हैं, जीएस लक्ष्मी मैच रेफरी हैं, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन इंडिया दिखाई देती है। वैशाली, आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट द पार्टनरशिप जो हमने देखा शिवा ब्रांड के बारे में, और एक 85 रनों की मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी साझेदारी मैं कहूंगा कैंप के बीच में हुई। यू थिंक क्या फील्डिंग करने जब आएंगे बोलेंगे चलो हमने एक रिस्पेक्टेबल स्कोर इस पार्टनरशिप के जरिए तो कर दिया, देयर इज सम न्यूज फॉर मोटिवेशन?
3: और दोनों की पार्टनरशिप, लेकिन स्कीवर का यहाँ पे एक बड़ा रोल है कि जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं ना उन्होंने कॉन्टिन्यूस स्कोर किया है। अगर हम उनके स्कोर की बात करें ना तो कोई भी उन्होंने 40 के अंदर कोई स्कोर नहीं किया, उससे अबव ही किया है। तो ये एक ना बेनिफिट था इंग्लैंड के पास, और इसको थोड़ा सा ऊपर भेजते तो मे बी ये स्कोर डबल हो सकता था आज। एंड अगर हम फील्डिंग की बात करें, जैसे मैंने फर्स्ट पहले भी बोला था कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके दिखाई है।
0: दोनों क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
3: यस टू हियर दैट। एंड इंग्लैंड अगर फील्डिंग ऐसी ही टाइट फील्डिंग करती है एंड स्पिनर उनके टाइट करके बॉल डालते हैं, लाइन टू लेंथ बॉल डालते हैं, तो हो सकता है कि वो ये किताब अपने नाम भी जीत सकते हैं।
0: लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट बन सकती हैं आज इंग्लैंड? माना
4: नहीं, मुझे लगता है कि जब बार बार हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, और ऑस्ट्रेलिया का जिस तरीके से आप बैटिंग लाइनअप देखिए, जॉर्जिया वॉल से शुरू होता है, बेथ मुनी पर हम बात पहले भी कर चुके हैं, फीबी लिचफील्ड 2022 में डेब्यू किया था उन्होंने, और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट जीता था, पहली बार फाइनल है और वर्ल्ड कप जीतना चाहती हैं, जबरदस्त खिलाड़ी है, उन पर काफी दारोमदार होगा। एलिस पेरी की हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो कितनी कमाल की खिलाड़ी है। एशले गार्डनर जो एशिज सीरीज हुई थी 2025 में दोनों टीमों की, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी। तो काफी बड़ा लंबा चौड़ा डेप्थ है, बहुत गहराई है, और ये सारे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत सारा अनुभव है इनके पास। आप एलिस पेरी अकेले दम पर मैच जिताने का मादा रखती है, तो स्कोर वाकई में जो चेतन सर ने कहा 30-35 रन कम रह गया है।
1: चेतन, ऑलवेज वी टॉक अबाउट इट्स अ प्रेशर ऑन प्लेयर्स एंड इट्स अ बिग फाइनल्स, इट्स अ बिग टूर्नामेंट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, दे हैव डन सो वेल, दे हैव वन ऑल द मैचेस टिल हियर, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर एक्चुअली प्लेयर्स गो थ्रू?
2: बताइए, मैं जो बात सोच रहा था ना मेरे दिमाग में, आपने वही क्वेश्चन मेरे से पूछा कि आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, आप हमारे समय की क्रिकेट छोड़ दीजिए, आजकल आपको जब आउट होने से डर नहीं लगता ना तो आप निडर हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इंडिया के खिलाफ देखी, द वे दे एक्चुअली बैटेड, वहां से आपको अनुमान लगता है कि जब आपका डर, वो आउट होने का डर खत्म हो जाए ना, तो एक्सप्लोसिव क्रिकेट आपको नजर आती है। आपने ये अंदर प्लान कर लिया है कि अगर वी आर 23-3 ऑल्सो वी विल गो फॉर इट। मतलब आजकल की जो क्रिकेट है वो इस तरह की क्रिकेट होगी, वो मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट, डजंट मेक अ डिफरेंस, इट्स सेम, द मेंटेलिटी इज सेम। जब ये मेंटेलिटी आपकी हो जाती है तो 150 जो अभी हम परसा था शर्मा मैम बोल रही थी और मैं वही पहले बात कर रहा था कि आपको 150 की जगह 180 चाहिए था, एक क्वेश्चन चाहिए था आपके बोलर्स के लिए, बट अब आपके पास 150 है, 151 जीतने के लिए चाहिए। यू हैव टू फाइट ऑन दिस, यू हैव टू रियली फाइट, इट्स अ मैटर, आपने इतना हार्ड वर्क किया पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, दोनों अनबीटन साइड्स पहुंची हैं, इतनी मेहनत करके आप पहुंची हैं, और एक मैच की वजह से ट्रॉफी निकल जाएगी हाथ से। यू हैव टू गिव व्हाटएवर यू हैव विद यू, जस्ट गो एंड डू इट।
0: राइट देन, मेरे को ना लग रहा है कि ये शो जब वे बैक 1983 में अगर कोई लंचार शो हुआ होगा तो क्या बात की होगी वेस्ट इंडीज के बारे में। चेतन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड की विमेन्स टीम भारतीय क्रिकेट टीम की 1983 की जो टीम थी उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बड़ी जल्दी से सोफी एकलस्टोन के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। शी इज ऑफकोर्स द टॉप सेकेंड बोलर आईसीसी की रैंकिंग्स में, उनका इम्पैक्ट कितना होगा?
3: उनका इम्पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि क्योंकि अभी तक देखा गया उनकी इकोनॉमी सिक्स से ऊपर नहीं गई है अभी तक, एंड वो सिक्स फाइव के बीच में ही रही है।
0: हाइट भी उनकी 6 फुट है
3: बिल्कुल, एंड वो 110 प्लस विकेट्स भी उन्होंने लिए T20 के अंदर। तो ये इम्पैक्ट ना एक बेटर है इंग्लैंड टीम के लिए, एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर होना बहुत जरूरी है, एंड वही आती है जो बीच में जो मिडिल ओवर्स होते हैं उसके अंदर आके वो विकेट्स जो चटकाती हैं वो डिफरेंट होता है, और वहां पे उनको लाना और वो विकेट्स आज उनको वो चटकाने बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया टीम के, क्योंकि ये वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो ये उनको करना पड़ेगा, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो अपना दिखाना पड़ेगा इस पिच पे आज।
1: And you know, everyone is excited because we want to see great match, as Chetan says. One thing which I really want to ask now, that Australia is very comfortable. It's England's ground and they know that, you know, they have been winning on this particular ground. What are the chances that Australia skips? Is it overconfidence or it might be like they in their mind have decided they are going to do well?
2: देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो अपने जैसे नॉर्मल क्रिकेट खेलती है ये वैसे खेलेगी। आपके पास एज ए बॉलर यू हैव ए चांस बिकॉज दे लव द अटैकिंग क्रिकेट। अगर आप मेरे से इसमें ये पूछेंगे कि फेवरेट्स, मैं अभी भी फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया को मानता हूँ, तो विद 150-60-40 रेशियो इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया आई विल गिव इट।
0: चेतन भैया बड़ी जल्दी से हमको कमेंटेटर्स को हैंड ओवर करना है, आप फेवरेट तो मार रहे हो लेकिन अंदर की कोई आवाज इंग्लैंड के लिए कुछ कह रही है?
2: आई डोंट नो, आई हैव अ लिटिल डाउट अबाउट इट, यू आस्क मी द ट्रुथ। 180 होता तो मैं जरूर कहता मनीष।
0: मोना बड़ी जल्दी आपसे पूछना चाहूंगा, चार्ली डीन के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बट आपका मन क्या कह रहा है?
4: देखिए मुझे अगर स्कोरबोर्ड पे बहुत बड़ा स्कोर होता ना तो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होता है। एक यहाँ एक एडिशनल प्रेशर तो है ही कि आपको सिर्फ 150 रन डिफेंड करने, तो उससे थोड़ा सा असर तो पड़ेगा।
0: वैशाली बड़ी जल्दी से योर
3: प्रेडिक्शन।
0: ओके, थर्ड अंपायर का रोल प्ले कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन भाई आपका, मोना पार्थ सारथी आपका, और वैशाली माथुर आपका, गीतांजलि सोनी के साथ मैं मुनीश जौली यहाँ पे आप सभी लोग से विदा ले रहा हूँ, क्योंकि कॉमेंट्री टीम हमारा इंतजार कर रही है अगले 20 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास, हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाएंगे विनीत गर्ग, एंड द बॉल बाय बॉल कमेंट्री इन इंग्लिश विल बी विद प्रकाश वाकनकर, टू लेजेंडरी फिगर्स अलोंग विद द स्कोरर भूपेंद्र सिंह भाटी, स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा, ओवर टू द कमेंट्री टीम।
5: स्वागत है आपका लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर, ये दूसरी पारी 2026 के फाइनल मैच की शुरू होने जा रही है। 151 का लक्ष्य है और 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप जीत लेगा, ये स्थिति यहाँ पर है। इंग्लैंड प्रयास करेगा, उनका अपना मैदान है, यहाँ पर वो कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया को रोकना चाहेंगे। सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कितनी तगड़ी टीम है और मशहूर है कि नॉकआउट में उनके मुकाबले वो बिल्कुल एक तरफा कर देती हैं, इतनी हावी हो जाती हैं विपक्ष पर। तो क्या ऐसा होगा? इस समय सब भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं, एक रोमांच इस समय तो कम से कम है कि 151 रन है। क्या इंग्लैंड शुरू में कुछ अच्छे विकेट्स निकाल लेता है, जल्दी जल्दी कुछ उसकी विकेट उसकी झोली में आ जाते हैं तो उनके अवसर बन सकते हैं इस मैच पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप यूं समझ लीजिए नंबर 11 तक बैटिंग करती है, तो इसलिए बैटिंग की कोई कमी है नहीं। पिच में भले ही थोड़ी बहुत दुश्वारी हो कि वो धीमी है, नीची रहती है, लेकिन जिस तरह से स्टंप्स को अटैक किया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने, कंटिन्यूसली स्टंप्स को प्ले में रखा और बैटर को बाध्य किया कि वो सावधानी से खेलें, और गति का बहुत ही चतुराई के साथ लगातार परिवर्तन करना, इस तरह से करना कि पकड़ में ना आ सके, और उससे मात खाई, इंग्लैंड को शिकस्त दी उन्होंने उस पारी में, उसको बांध के रखा। 7.55 के औसत से 151 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए। जॉर्जिया वॉल और बेथ मूनी दोनों फॉर्म में है, और बेथ मूनी तो जबरदस्त फॉर्म में है, पिछले मैच में भी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, तो उम्मीद ये की जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रकाश,
6: well, that's what you'd expect. Stranger things have happened, but yes, one does feel this game is Australia's to lose. England, one feels, will almost have to bowl Australia out. I don't think they can defend 20 overs and limit the scoring below 151.
5: पिछले मैच में 61 रन बनाकर नाबाद रही थी बैट मूनी, विकेट कीपर है, अच्छी कीपिंग की और कम से कम दो, एक में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका योगदान रहा। चार्ली डीन ऑफ स्पिनर वो बॉलिंग करने जा रही हैं और जब नेट सेवर ब्रांड नहीं थी तब उन्होंने कप्तानी भी की इस टूर्नामेंट में तीन मैचों में और ये अच्छा मैचअप है। दाएं हाथ की ऑफ स्पिनर लेकिन इस समय राइट हैंडर सामने, पहले गेंद को ओवर द टॉप खेल दिया, लॉन्ग ऑफ।

0: बाउंड्री के बाहर 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: That's a statement, Vineet. That's the way Australia play, right? Brilliant shot to start off.
0: हाफ वॉली ऑन दी ऑफ स्टंप और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बैट का अच्छी बैट लिफ्ट, पूरा फॉलो थ्रू, अच्छी फ्लरिश, 4 रन। अगली गेंद बहुत खतरनाक ढंग से आई, गेंद ये और उंगली उठी और खतरनाक ढंग से गेंद मूव हो रही थी, हालांकि रेफरल लिया गया है, ऑन ग्राउंड निर्णय है आउट का, वो मद्देनजर जरूर रखा जाएगा, वो मायने रखा जाएगा। और रेफरल लिया है जबकि 3 सेकंड शेष थे टाइमर पे, और वेस्ट इंडीज की जो अंपायर है जैकलीन अब इशारा कर रही है हाथों से टीवी बनाकर कि टीवी अंपायर ये सुनिश्चित करे कि भाई ये निर्णय बदलने की आवश्यकता है या नहीं है, क्या वो आउट था या नहीं था। गेंद वास्तव में कुछ ऐसी अप्रत्याशित कर रही थी, चकवा खा गए थे बैटर, so बैट के दूर नजर आ रही है प्रकाश गेंद।
2: Yeah, very similar to the way that she got out against India, Vinny, if you remember. Struck on the back leg and this will be close.
0: Kim Cotton, jabki leg stump ke bahar gain tippa khaye to out nahi diya ja sakta. Aur aisa hi hua hai. Achha referral aur umpire, itna varishth umpire hai ye. Jacqueline itni varishth hai. Kam se kam senior most umpire mein se ek hai. Anyway, the ball pitching outside the leg. और बच गए वहां पहले विकेट देने से ऑस्ट्रेलिया। बॉल सामना करेंगे अभी इस गेंद की, गेंद की गेंद घूम रही, खेला है बहुत विश्वास के साथ नहीं, लेकिन पहले ही पूरा मन बना लिया था उस स्ट्रोक को खेलेंगी, कमिट हो गई थी उस स्ट्रोक के लिए और उसको बखूबी खेल भी दिया, आसानी के साथ 1 रन ले लिया, 5 रन जीतने के लिए बनाने, कुल मिलाकर 151 रन। मूनी और बॉल की जोड़ी मैदान पर है, ऑस्ट्रेलिया चाहे तो इत्मीनान से भी खेल सकती है क्योंकि आस्किंग रेट 7.5 के आसपास का है, 5 रन बगैर नुकसान के। अब मूनी के ही लिए डीन ने अपने को मोर्चे पर लगाया है क्योंकि बर्ट मूनी विकेट कीपर लेफ्ट हैंडर है और यह अच्छा मैचअप है ऑफ स्पिनर डीन, जिन्होंने की काफी विकेट लिए हैं, कुल मिला के 4 लिए। डीन अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में छाई रही है, 9 विकेट उनके खाते में इस मैच से पूर्व पहले ही है, टॉप 3 बॉलर्स में उनकी गिनती है। चार्ली डीन ये गेंद और उस पर सिंगल लेना चाहते थे, गेंद को वहीं पास में खेला था, कोई स्ट्रोक में टाइमिंग नहीं था, ज्यादा दूर गेंद गई नहीं, मुश्किल से 5 गज के फासले पर गेंद जा रही थी, ये देखते हुए पलटकर अपने बॉलिंग मार्ग पे वापस आ गए। और स्पिनर है, राउंड विकेट बॉलिंग कर रही है लेफ्ट हैंडर को, इस बार क्रीज में जगह का परिवर्तन उन्होंने किया और फास्टर वन कुछ हड़बड़ाकर खेला और आमदा है, हर गेंद पर रन लेना चाहती हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, इधर उधर प्लेस करके सिंगल स्ट्राइक रोटेट करके एक अवसर बनाती ही जा रही हैं और बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई बैटिंग नजर आ रही है। और इस बार गेंद की लंबाई थोड़ी सी कम थी, बैकफुट पे जाके खेला, हालांकि स्ट्रोक के बहुत ज्यादा टाइमिंग और प्लेसमेंट नहीं था, दो खिलाड़ियों के बीच में से निकलने की कोशिश थी, स्मिथ के हाथ में लगने के बाद गेंद छिटकी लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने उसको उठा लिया और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: जानिए आभा के बारे में।

0: Lauren Bell. She knew she had a chance there. In comes Bell again. Two dot balls to start things off. Balls to Mooney. No timing, but she'll get that ball away just in front of short cover. They'll pick up a single. Seven without loss. Alice Capsey there charging in jersey number 28. And a run to Mooney. She goes to two. Vaughan is on five. Australia, seven without loss. Chasing 151, which I think everybody agrees, at least statistically speaking, is below par. Conversations between the England captain and the bowler now settles, and Mooney waits as Georgia Vaughan settles the right-hander, and Bell comes in, balls wide outside the off stump, and the ball's been deflected off the gloves, running down towards the third boundary for four runs. By
1: ye laga abha ka chauka.
0: Waiting for the umpire to signal to see whether there was anything on it, whether it's a leg bye or whatever. Four runs nevertheless. No ball to boot because it was outside the tram line, the guiding return crease, and so that is not on the playing surface, which means it's a no ball and a free hit, just what Georgia Vaughan would have looked for. The batter moved to the offside but not sufficiently, and in any case, anything that pitches outside the cut surface on the return crease is a no ball. Lauren Bell was thrown away by that movement. Comes in and bowls now, and Vaughan pulls handsomely. Question is, did it go all the way or did it drop inside the boundary? Looks like one bounce four, and Australia's innings gaining momentum. Our scorer Bhatti very keen to tell me that this was the 1,000th boundary in the T20 World Cup. Thank you. And 1,000 fours, if that means anything. I think it does to those who are statistically minded. But 16 without loss now. Australia setting the tone for this run chase. Here's Bell again. Comes in and bowls. Down the leg side, will be called wide, I am certain. We'll wait for the umpire's signal to confirm. It is 17 now without loss. Australia creating panic among the England bowlers who haven't been able to settle down. Lauren Bell bowling a no ball. Not for the front foot, but for direction. As Wall waits now for the fifth ball. This is an extended over, this one. And she's pulled it on. George Wall has dragged this one from outside the off stump. Inside it, smiles on Charlie Dean as well as Lauren Bell's faces. And that is the first wicket. England will need plenty more of that. 17 for one. Vineet.
2: Zarurat nahi thi, lekin jaisa ki aapne kaha ki aamada thi har gend pe bada stroke. या रन लेने की, और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, आड़े बैट से खेलने की कोशिश, अंदरूनी सिरा लगा, स्टंप से जाके टकरा गई। बेल युवा है, अभी 25 बरस की, बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं, हड़बड़ा गई थी जिस तरह से उनके ऊपर आक्रामक तेवर दिखा रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बैटर, और उसकी वजह से उनकी लाइन बार बार वो बदल रही थी, लेंथ भी बिगड़ी। शॉर्ट गेंद ये देखते हुए कि दो फील्डर बाहर हैं और मिड विकेट बाउंड्री पे कोई है नहीं, शॉर्ट गेंद की और पुल कर दी गई, और एक गेंद तो उनकी पिच से बाहर, जैसा कि प्रकाश ने बताया, टिप्पा खाया, और इसलिए क्योंकि पिच के बाहर टिप्पा खाया वो नो बॉल दी गई थी। लेकिन अच्छी वापसी की है, एक विकेट मिल गया है, ये महत्वपूर्ण है, अब शिकंजा कसा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगा था कि दोनों छोर से ताबड़तोड़ बैटिंग करने का मन बनाकर मैदान पर उतरा था, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, और कुछ असर नजर भी आया इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर। वो हड़बड़ाकर इधर उधर गेंद करते रहे, लेंथ भी चूके। मेलिनी काफी अच्छी कप्तानी करती रही हैं पिछली पारी में, इस बीच एक गेंद और इसको सीधा ड्राइव कर दिया, उस और कोई फील्डर है ही नहीं, चार रन स्ट्रेट ड्राइव, फोर रन्स।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: बहुत ही इत्मीनान के साथ 21 रन एक विकेट पर दूसरा ओवर भी समाप्त हो गया।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात

0: सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: दिलचस्प क्रिकेट। इंग्लैंड चाहेगा झोली में एक विकेट और आ जाए और ऑस्ट्रेलिया अब दोबारा सोच में लगा होगा कि क्या जिस तरह से शुरुआत की थी उसको बदल कर कुछ धैर्य से काम लिया जाए। कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर उनके सामने है नहीं, जीतने के लिए 151 रन बनाने हैं, बहुत बैटिंग उनके पास है। बेल का निश्चित रूप से हौसला बढ़ेगा। इस बीच अगेन थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद को अपना संतुलन नीचे करते हुए फिर खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही है और वो पूरा भी हो जाएगा। 23 रन एक विकेट पर। स्मिथ बॉलिंग में परिवर्तन, चार्ली डीन की जगह लिंसे स्मिथ आई हैं, बाएं हाथ के स्पिन बॉलर हैं। ये मैचअप्स का जमाना है जनाब, तो जिस तरीके का बैटर है अगर आपको गेंद बैटर से अलग जा रही है तो खेलने में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दिक्कत होती है, तो ऐसे ही बॉलर को लगाया जाता है जो बैटर से दूर गेंद को निकाले। कुछ गेंदें बिल्कुल ग्रिप हो जाती हैं, नीची भी रहती हैं और ये बात सही है कि गेंद वाइड थी लेकिन उन दो कारणों की वजह से वो बोल्ड आउट हुई। बहुत बढ़िया फील्डिंग करने का प्रयास तो था, कलाबाजी खाई लेकिन रोक नहीं सकेंगे ये चार रन।
2: ये लगा आभासा चौका।
1: स्मिथ ने कुछ तेज गेंद की थी, ऑफ स्टंप की सीध पे आती हुई गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला, गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच के क्षेत्र की तरफ गई, पूरी लंबाई में डाइव लगाई, लगभग गेंद तक पहुंच गई थी, एक हाथ आगे बढ़ाया लेकिन गेंद रुकी नहीं और बाउंड्री पार हो गई। अगली गेंद में स्टंप्स पर, स्टंप पर अटैक कर रही है स्मिथ। स्मिथ अच्छी लगातार, कई बार उन्होंने नई गेंद का भी इस्तेमाल किया है और यही सही नई रणनीति है इंग्लैंड की, वो भी लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया था, एक एक ओवर के बाद भी बॉलर को हटाएगा। थोड़ी सी शॉट नीची थी, पुल करने में थोड़ी दिक्कत तो आई लेकिन फील्डर है वहां पर, वो उसको उठा लेंगे आसानी के साथ और केवल एक रन मिलेगा। तो ये खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। डैनी थी वहां पर जो फील्ड कर रही थी, बैथ मूनी, 65 रन की आवश्यकता है 1000 वर्ल्ड कप में रन पूरे करने के लिए। एलिस पेरी का क्या कहें, महान क्रिकेटर, इनको पिछले 50 साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। या तो आप एज ए बैटर ही उनको शामिल कर लें या एज ए बॉलर, दोनों कामों को भरपूर अंजाम देती हैं। अगली गेंद को ओवर द टॉप खेला, फील्डर मौजूद है, केवल एक रन मिलेगा। स्ट्रोक के साथ दौड़ते हुए उसे एक रन को पूरा किया। और कुछ लोग उनको गैरी सोबर्स ऑफ विमेन्स क्रिकेट बुलाते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन एक विकेट पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: जानिए आभा के बारे में।